आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

करके नीला तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले हैं फेक, उनके बारे में मेरा है ठीक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it as real as I speak। कैसे करे कोई ना सवाई, हर कोई समझता अपने को भाई। बातें ही बातें हैं, वो सारी बातें अंदर से खोखली, तुझे को रोकते क्यों नहीं, अपने आप को ठोकते। आती है क्यों मुझको हंसी,

0: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
1: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
2: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.1
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: दिस इज FM
7: 101। आई लव FM 101।

0: This is FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून, अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
3: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: सुनते रहिए FM 101.

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहार, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: This is FM
2: 101. 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
1: This is FM
2: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
1: This is FM
3: 101. There's music, and then there's magic. One above FM 101.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: तेरह जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
3: सुनते रहिए FM 101.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
5: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर पाकिस्तानी यरगमालियों की रिहाई और उनकी महफूज वतन वापसी के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास आज इस्लामाबाद में होंगे। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने ईरान के जौहरी मसले समेत तमाम हल तलब उमूर को पुरम ज़राए से हल करने की हिमायत का इरादा किया है। डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज मालदीप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतलिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

0: KE Power, the ultimate power solution.
1: This is FM
2: 101. 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
1: This is FM 101.
2: Sochiye, jab duniya sunai to de, magar dikhai na de. लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है लेकिन अब नहीं 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में
3: शुक्रिया आपने एफएम 101 ट्यून किया
4: देयर्स म्यूजिक And then there's magic. One above FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: सरल संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।
1: दिस इज एफएम 101।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और सोमालिया के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर गुफ्तगू में पाकिस्तानी यरगमालियों की रिहाई और उनकी महफूज वतन वापसी के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान के सरमायाकारी बरामदात और मालियाती शोबों में रवां साल नुमाया इस्तेहकाम देखा गया है। अक़वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मशरक़े वुस्ता में कशीदगी में इज़ाफ़े के तनाज़ुर में मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस और नॉर्वे ने मकबूजा मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्वस इसराइली नेटवर्क्स के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है।
1: हमारे बच्चे, हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतलिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: sonra tebe.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली के अरकान से मुलाकात में तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया है। ईंधन की बचत और इजाफी किफायती इकदामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी ने ग्रॉसरी और करियाना स्टोर्स के औकात कार में तौसी की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हसन खेल में बुजदिलाना हमला नाकाम बनाते हुए 8 खवारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। वजीर तिजारत ने कहा है कि हुकूमत इक्तसादी तरक्की, सनअती जिद्दत और बरामदात में इजाफे के लिए पुरअज़्म है।
1: We'll be back after this short commercial break.
2: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन। मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
6: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: ओ हर फन माला ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदो सीने लाया दिल होया रोशन।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल जहन्नुम बरास्ता जन्नत बहुत जल्द सिर्फ
1: दिस इज एफएम 101.1।

listening to FM 101, Abale Abale Oshawa Shawa.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सादी काउंसिल का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। ईंधन की बचत और इजाफी किफायती इकदाम की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी ने ग्रोसरी और कैनरा स्टोर के औकात कार में तौसी की है। वजीर इतलात ने कहा है कि पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खुफिया ठिकानों पर की जाने वाली कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज मारे गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 19 सितंबर से जापान में मुनक़िद होने वाली एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: अस्सलाम वालेकुम सामीन, मेरा नाम वाइज़ा रफ़ीक है और मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ और मैं पाकिस्तान में लाहौर और इस्लामाबाद में वकालत करती हूँ। और आज मैं आपसे एक बहुत अहम मौजू पे बात करूँगी और वो है साइबर क्राइम्स और साइबर सेफ्टी। पाकिस्तान में जैसे हालात बदल रहे हैं और AI और डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिस तरह से उरूज मिल रहा है, उस तरह से हम उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर स्पेसेस के अंदर भी क्राइम बढ़ रहा है। अब साइबर स्पेसेस में क्राइम होता किस किस तरह का है, किस किस फॉर्म में है, उसकी मुख्तलिफ अशकाल हैं। मिसाल के तौर पे साइबर स्टॉकिंग, कैट फिशिंग, ऑनलाइन टारगेटेड कैंपेन्स। हमने अक्सर देखा कि ऑनलाइन जो हमें हेट मिलता है, मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होके कमेंट्स किसी एक डायरेक्शन में करना शुरू कर देते हैं, हैश टैगिंग शुरू हो जाती है। फिर ये तो एक अब्यूज़ करने की जो है वो शक्ल है। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, यानी अक्सर हम में से हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जिसमें लोग कहते हैं कि जी आपका फ़लाँ बेटे को या बेटी को हमने किडनैप कर लिया है और आप हमें अपने आपके मोबाइल पर यह कोड आएगा, आप हमें ये कोड बता दें और इस कोड के बाद जो है वो हम उनको छोड़ देंगे। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम की डोमेन में ऑफेंसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और उस पर असरअंदाज हो रही हैं। तो अब इस हवाले से हम कानूनी तौर पे कर क्या सकते हैं, हमारे पास रेमेडी क्या है और आगे इसका वे आउट क्या हो सकता है अगर हम में से किसी के साथ ऐसा कोई जुर्म पेश आता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का मौजूद है, जिसको 2025 में अभी अमेंड किया गया है, यानी उसमें 2025 में कुछ तरामीम आई हैं जो कि बहुत मेजर तरामीम हैं। कानून के शोबे से या उसके अलावा भी जो लोग कानून को पढ़ते रहते हैं वो ये जानते होंगे कि 2025 में पीका अमेंडमेंट्स या पीका तरामीम के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस भी होती रही और उस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा ने जन्म भी लिया। तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो है वो क्या है? ये एक ऐसा कानून है जो डिफ़ाइन करता है कि पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन स्पेसेस में किसी को कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाती है, मिसाल के तौर पे कोई अगर आपको स्टॉक कर रहा है, कोई अगर आपकी तस्वीर को, आपके किसी कंटेंट को, आपकी वीडियो को आपकी इजाज़त के बग़ैर कहीं पे पब्लिश करता है या करती हैं, कोई अगर आपकी शक्ल या आपकी जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा कॉन्टेंट जनरेट करता है AI बेस्ड, जिसकी वजह से आपकी रेपूटेशन को हार्म पहुँचता है, उसके अलावा कोई अगर आपको मुसलसल मैसेजेस या स्पैमिंग जिसको कहते हैं अगर बार बार की जाती है, जिसकी वजह से आपको मेंटल टॉर्चर हो रहा है आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में और दीगर उमूर में उससे खलल पैदा हो रहा है, तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको पीका में क्रिमिनलाइज किया गया है और उस पे मुख्तलिफ किस्म की सज़ाएं और मुख्तलिफ प्रोसीजर्स मौजूद हैं जिनके तहत वो सज़ाएँ हो सकती हैं। अब आपके पास हल क्या है, या सज़ाएं तो हो सकती हैं लेकिन आपने करना क्या है और उस पे हम आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में होने वाला वायलेंस, जिसे हम आजकल टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस या टेक फैसिलिटेटेड हार्म्स भी कहते हैं, चाहे वो जेंडर बेस्ड हों चाहे वो जेंडर बेस्ड ना हों, तो ऐसी सिचुएशन में हम NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है जिसको हम शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उनका ऑनलाइन भी एक पोर्टल मौजूद है और ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ आप बाय हैंड भी अगर मैन्युअली भी अपनी दरख्वास्त जमा करवाना चाहते हैं तो आप NCCI में जाके अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिसमें आप पूरी तफसील लिख दीजिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ, कौन शख्स आपको किस तरह से तंग कर रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जा रहा है और उसका जो भी अवेलेबल सबूत है, सबूत या एविडेंस जिसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसके ऊपर मैं आगे जाके भी थोड़ी सी मज़ीद तफसील में बात करूँगी, क्योंकि एविडेंस बहुत ही अहम कड़ी होती है इस किस्म के केसेस में, या इस किस्म के केसेस ना भी हों उसके अलावा भी जब हम इन्वेस्टिगेशन पे या अदालती कार्रवाइयों में जाते हैं तो एविडेंस का एक बहुत अहम किरदार होता है। तो खैर बहरहाल वापस आते हैं सबूत से, पहले जो मैं बात कर रही थी कि हम अगर आपके साथ कोई इस किस्म का मामला होता है तो NCCI में आप जाके दरख्वास्त जो है वो जमा करवा देंगे, जो भी साथ अवेलेबल एविडेंस है आप उसको जमा करवा देंगे, उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उस पर प्रोसीडिंग होगी। NCCI के जो लोग हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो जो दफ़ात जो जो क्राइम्स उसमें होते नज़र आते हैं उसके हिसाब से وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اپلیکیشن کتنی اسٹرانگ ہے اور اس کو آگے ایف آئی آر میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اب یہ ایک بہت ہی اہم سٹیج ہوتی ہے جس میں اگر میں پریکٹیکلی اور ریئلسٹکلی بات کروں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اوفینسز کے جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے انویسٹیگیشن کی اور ایف آئی آر کی اور کرمنل ٹرائل کی ضرورت ہے, لیکن اکثر کلائنٹس اور اکثر شہری ہمیں یہ رپورٹ کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں کہ ان کو ان کے کیسز کو جو ہے وہ آگے نہیں بھیجا گیا. تو میرا یہ بات کہنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ دیکھیے, کمیاں اور کوتاہیاں اور جو لوپ ہولز ہیں وہ ہر محکمے میں اور ہر سسٹم میں اور ہر پروسیجر میں موجود ہیں, لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے سسٹم کو افیکٹو بنایا جا سکے اور فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے شہریوں کو. تو ایف آئی آر کے بعد کی اگر ہم بات کریں تو اگر تو ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے تو پھر ایک پراپر کرمنل ٹرائل چلتا ہے جس میں قانونی طور پہ میجسٹریٹ کے سامنے باقاعدہ کارروائی ہوتی ہے, جس میں گواہوں کے بیان ہوتے ہیں, اس کے اوپر جرا ہوتی ہے اور مختلف اور سٹیجز کے بعد ایونچولی پھر کورٹ سے فیصلہ آتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کمپلینٹس ہیں ان کو این سی سی آئی, جس کو پہلے ایف آئی اے بھی کہا جاتا تھا, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی, اس لیول پہ ہی نمٹا دیا جاتا ہے. لیکن کیا صرف این سی سی اے آئی واحد ادارہ ہے یا واحد پلیٹ فارم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہراسانی یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو کیا صرف آپ این سی سی آئی اے کو رپورٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. این سی سی آئی اے بالکل ایک موضوع ادارہ ضرور ہے کہ جس نے ایونچولی آپ کی درخواست پہ آگے پروسیڈ کرنا ہے, لیکن ڈائریکٹلی اپروچ کرنے کے بجائے مختلف جو انڈیپینڈنٹ کمیشنز موجود ہیں, مثال کے طور پہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس, اسی طرح سے نیشنل کمیشن برائے وقار نسواں موجود ہے, نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس موجود ہے, انسانی حقوق کا کمیشن جس کی میں نے پہلے بات کی وہ موجود ہے, تو مختلف اور جو سرکاری ادارے اور سرکاری پلیٹ فارمز ہیں, اور اگر ہم صوبائی سطح پر بات کریں تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو موجود ہے, پروونشل کمیشنز آن دی اسٹیٹس آف ویمن موجود ہیں, اس کے علاوہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹیز موجود ہیں, پھر ہم ڈپارٹمنٹس اور منسٹریز پہ آ جائیں اگر تو اس میں بھی سوشل ویلفیئر اور خواتین کی پروٹیکشن کے لیے ادارے موجود ہیں. تو ہم ان تمام پلیٹ فارمز کی بھی مدد لے سکتے ہیں اور ان کے تھرو بھی ہم این سی سی آئی اے کو اپروچ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ درخواست جمع کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر این سی سی آئی اے اسی طرح سے جو میں نے پہلے پروسیجر بتایا ہے اس کے تحت اس کو اس پر پروسیڈ کرے گا. اس کے علاوہ تیسرا جو ایک حل ہے جس کو اکثر لوگ زیادہ افیکٹو حل سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی نہ کسی لائر کو بھی اپروچ کر کے آپ ان کے تھرو بھی اپنی اپلیکیشن کو ایک پراپر جامع لیگل کیس کے طور پہ بھی موو کر سکتے ہیں. تو مختلف چینلز, مختلف روٹس, راستے موجود ہیں جن کو اپناتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ آن لائن پلیٹ فارمس پہ کسی قسم کی بھی کوئی ہراسانی, کوئی بلیک میلنگ, کوئی تھریٹس, فائنینشیل کرائم, ابیوز, ہراسمنٹ, اسٹاکنگ, اسپیمنگ, مختلف یہ نام ہیں جو یہاں پہ ان اسپیسیز میں کرائمس ہو رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے سامنے تو ہر روز مختلف نئی نئی ٹرمینالوجیز بھی آ رہی ہوتی ہیں, تو اس قسم کا اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان الیکٹرانک کرائمس ایکٹ میں اس کی ریمیڈیز موجود ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ایک آئیڈیل قانون ہے اور میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, لیکن بہت حد تک ہماری جو ایگزسٹنگ ریالٹی ہے, جو اس وقت کی ہماری حقیقت اور اس وقت کی جو ہماری نیڈ ہے, اس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جن کو یہ افیکٹولی جو ہے وہ ٹیکل کیا جا سکتا ہے. سو اس کے علاوہ ہم نے جب آن لائن پلیٹ فارمز کی بات کی تو افیکٹولی جو ہے وہ ہم پیکا کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسا پہلو ہے پیکا میں, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں, جس کو بہت جو کہ ایک گیپ کے طور پہ ابھی دیکھا جا رہا ہے, اور ایکسپرٹس اور پریکٹیشنرز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ایک کمی موجود ہے. وہ کمی کیا ہے؟ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ میں اس وقت ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ جینڈر بیسڈ وائلنس, یعنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہونے والی ہونے والے صنفی جو جرائم ہیں, جو صنفی تشدد ہے, اس کو پیکا میں ڈائریکٹلی کور نہیں کیا گیا. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری خواتین یا جو خواجہ سرا کمیونٹی سے لوگ آن لائن وائلنس کو, جو صنفی بنیادوں پر ہونے والا وائلنس ہے, اگر اس کو وہ رپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بہت ہی اسٹرانگ لائحہ عمل جو ہے وہ موجود نہیں ہے. ہمیں ریکویسٹ کرنا پڑتا ہے فیس بک کو, یوٹیوب کو, ٹویٹر, یا جو پہلا پرانا نام ٹویٹر تھا اب جس کو ایکس کہتے ہیں, اور اس طرح سے اور جو مختلف پلیٹفارم होम्स हैं उनको पाकिस्तान से रिक्वेस्ट जाती है और हम उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये कंटेंट जो है ये एक सिटीज़न के ख़िलाफ़ पोस्ट हुआ है तो आप इसको जो है वो उतार दीजिए और अपने प्लेटफॉर्म से इसको आप डिलीट कर दें। और उस हवाले से भी मैं अपने सामीन को ये बताती चलूँ कि उसका जो कंप्लाइंस रेट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको लेटेस्ट 2025 की एक रिपोर्ट से एक स्टैटिस्टिक्स जो है वो अर्ज़ करूँ तो फेसबुक की तरफ से कंप्लाइंस रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7% है, यानी कि बिल्कुल ही आप समझें कि ना होने के बराबर है। तो इसीलिए ये बहुत अहम है कि हम जो इंटरनेशनली अवेलेबल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल वो हो रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस बनाएं, उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल टाइज बनाएं और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह से हम उनको टेबल पर लेकर आएँ कि जहाँ पर हम अपने कवानीन की इन्फोर्समेंट के लिए उनको इस्तेमाल भी कर सकें और हम इंश्योर कर सकें कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऑफेंसेस में कम से कम हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट भी करें और उस पर कंप्लाइंस भी अपनी जो है वो शो करें। उसके मुख्तलिफ तरीके और स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, लेकिन अहम चीज़ जो है वो ये है कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक शहरियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो मुहतात रहें, वो केयरफुल रहें और डिजिटल स्पेसिस में अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा, ख़ास तौर पर जो अपने ज़ाती खवाइफ हैं उनको देने से गुरेज करें और बहुत ही एहतियात से, बहुत ही जहाँ पे इनएविटेबल हो वहाँ पे सिर्फ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, अपनी पिक्चर्स, अपने मीडिया और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके बारे में जितना प्राइवेट रह सकते हैं उतना रहा जाए ताकि इस किस्म के मसाइल को अवॉइड किया जा सके। ये मैं प्रिवेंशन के हवाले से बात कर रही हूँ, दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑब्वियसली। इस पर हमें जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो तो यही है कि हमारे कानून में तरामीम आएँ और इसके जो हैं वो देर पा इसका जो है वो हल निकल सके, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया।
2: सुनते रहिए FM 101
1: जाता तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत शुक्रिया।
2: सुनते रहिए FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Hi, this is FM 101.
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This is FM 101, where your spirit is set free.
4: 101 FM.
5: किसी भी किस्म की ज्यादती जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
6: This is FM 101.
7: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: आपने ऐसे मनोमन क्यों किया?
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: Avail up to 50% off at the Diners mid-season sale. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
2: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution.
3: हमसे है रोशन ये जहां,
4: हमसे है

0: All right, listeners, welcome back. This is your very own RJ Rimsha Basit Sheikh back online. And you are listening to FM 101. So, listeners, बाकी बातें हमारी होंगी बाद में, लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं. आज है 10 जून 2026. देखें वक्त कैसा गुजरा के जून की भी 10 तारे हो चुकी है. ये तो लग रहा है कि साल उड़ रहा है. अच्छा जी, एक रेड अलर्ट जारी किया गया है कि 10 और 11 जून के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में दिन के दर्ज हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जेर इलाके जो इलाके हैं दर्ज हरारत उनमें मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा.
1: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद. अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ. एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ. एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन.
2: हमसे है रोशन ये जहां,
3: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: I love FM
2: 101. 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
4: Tune in to one above FM.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण किगरा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: Coming up next.
1: 6 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister, addressing a meeting of the National Economic Council in Islamabad today, emphasized for collective efforts to accelerate economic growth. The government has extended the closing time for grocery stores till 10 PM. A helicopter of the Pakistan Army Aviation crashed near Muzaffarabad today, resulting in the martyrdom of all on board. 10 people died in a road accident on the Islamabad-Murree Expressway today. The All Parties Hurriyat Conference has stressed that India must be punished for violating global laws in the illegally occupied Jammu and Kashmir. The final of the Diamond Jubilee International Football Tournament between Pakistan and Afghanistan will be played in the Maldives this evening.
2: Hi, this is FM 101.
3: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
4: तहफ्फुज हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100%।
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
5: हमसे है रोशन ये जहां,
6: हमसे है

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al-Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
1: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
3: सोचिए जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर जहां हर गली में एक कहानी है लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
4: सुनते रहिए FM 101 101।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: साज़ो आवाज़, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
7: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
8: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
9: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the ultimate power solution।
10: हमसे है रोशन ये जहां,
11: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: की तरफ जा रहा।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर।

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की यूनिवर्सिटियों में आईटी तरबियत को बैनुल अक़वामी मंडियों की ज़रूरियात से हम आहंग करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के लिए 3,669 अरब रुपए के कौमी तरक्याती बजट की मुतफक्का तौर पर मंजूरी दी गई। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि शहरियों को आलमी सतह पर ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के असरात से बचाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। और डायमंड जुबली इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मालदीप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी है।
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: Avail flat 25% and 40% off at the Diners Mega Festive Celebration. Hurry up and visit store now or shop online at diners.com.pk. Terms and conditions apply.
3: Live, all the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101।
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए FM 101 सुनते रहिए FM 101 सुनते रहिए FM 101
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: FM 101, the sound of new millennium.

अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।

फिर यूं हुआ कि पहली मुलाकात में उसने अपनी आंखें सौंप कर मुझसे ये कहा, जाना आज से ये तुम्हारी हैं। उन आंखों में खोकर निकल पड़ा मैं हंसी दुनिया के रंगीन ख्वाब समेटने, मोहब्बत के दिल फरेब रस्तों की जानिब, लामबता लामका मंजिल की जानिब। फिर यूं हुआ कि दिन महीने साल इस तरह से गुजरे कि जैसे तेज हवा एक पल में सब कुछ उड़ाकर इधर उधर बिखेर कर रुक सी जाए, और कोई उन बिखरी हुई चीजों को समेटने अगर बैठे तो समेट ना पाए। फिर यूं हुआ कि शगुफे चाहतों की टहनियों पे फूटने लगे, परिंदे गा गा कर खुशी से झूमने लगे, मोहब्बत की हंसी वादी में वो उस वक्त साथ थी मेरे, और मैंने उसे ये कहा था, जाने जाना उम्र भर गर तेरा साथ रहे, मेरे हाथों में गर तेरा हाथ रहे, तो खुदा की कसम ऐसा मैं एक काम कर जाऊं, मोहब्बत में अमर अपना और तेरा नाम कर जाऊं, तू कहे तो चांद पर एक घर बना डालूं, सितारे तोड़कर जाना तेरे कदमों में ला डालूं। कहा था उसने ये सुनकर, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे गर तुम ही मिल जाओ दुनिया ही मिल जाए, उस चांद घर को क्या करूंगी मैं जहां पर तुम नहीं होगे, सितारे कांटे बन जाएं संगर तुम नहीं होगे, रस्ते अपने यकजा हैं कभी ये दो नहीं होंगे।

फिर यूं हुआ कि उदासियों ने आन घेरा था, मोहब्बत की वही वादी वीरानी का बसेरा था। परिंदे उड़ चुके थे सब, दरख्त उजड़े खड़े थे सब, ना ही वो थी मेरे संग और ना उसकी कोई आहट थी। दूर तक जर्द पत्ते थे और उनकी चरचराहट थी। फिर यूं हुआ कि चांदनी मेरी चौखट पे आई थी, चांद की चांद नगरी से अजब संदेशा लाई थी कि तुम भी भूल जाओ मान, उसने तुमको भुला डाला। गैर की आंगन में अपना घर बसा डाला, तुम्हारे बिन ही आंगन को सितारों से सजा डाला। फिर यूं हुआ कि रास्ते भी उसने यकजा नहीं रखे। उस वक्त से खड़ा सोच रहा हूं अब किधर जाऊं, मुझे तो उसकी तरह रास्ते बदलना भी नहीं आते हैं।

0: अपनी बातों की तरफ है ना। सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाला जो प्रोग्राम होता है हम इतने हफ्तों से इंतजार करते हैं, सदियां बल्कि मैं समझता हूं कि दहाइयों से आप इंतजार करते हैं ना इस प्रोग्राम का, जो कि बुध की रात को 10 बजे आपके लिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं आरजे डॉक्स, मेरे बड़े भाई, जान जिगर, सब कुछ। लेकिन आज क्या है कि ऐसा लगता है कि नीयत खराब थी उनकी, वो प्रोग्राम करना नहीं चाह रहे थे आज। नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ मसरूफियत थी जिसकी बिना पर आजकल बहुत ज्यादा आप जानते हैं कि मसरूफ हैं वो। ब्रॉडकास्टिंग और इंफॉर्मेशन के हवाले से बहुत सारी चीजों को वो लाइनअप कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, हेड कर रहे होते हैं, तो वक्त कहाँ मिलता है अपने प्यारों से मिलने का, है ना। ये मैं आप सबके दिलों में उनके लिए एक ऐसा बीज बो रहा हूं जिससे जब वो अगले हफ्ते, यानी कल भी वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, कल भी मैं ही प्रोग्राम करूंगा ये वाला, तो अगले हफ्ते जब वो आए तो आप खूब दिल खोल के भड़ास निकाल लें उनके ऊपर कि आरजे डॉक्स ये क्या करते हैं आप, हैं हमें अपने पीछे लगाकर अब आप भाग गए, आगे आगे भागने लगे हैं अब आप। हाँ, बाय द वे थैंक यू वेरी मच, जहां जहां तक मेरी आवाज सुनी जा रही है ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। वैसे हम ऐसा करते हैं कि इसको नाइट थेरेपी रहने देते हैं और इसको नाइट थेरेपी प्लस अधूरी बातें कर देते हैं। इसका जो टेक्सचर है, इसका जो मिक्सचर है, अमेजिश, बड़ी मजे की बनेगी, मजा आएगा, दोनों एहसास एक साथ यकजा करके सुनने में और मुझे आप तक पहुंचाने में। बहरहाल प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो चुका है, कोई ना कोई टॉपिक प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनाएंगे, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके लिए एक कलाम प्ले करूं, प्रोग्राम का पहला कलाम, और अली अब्बास की खूबसूरत आवाज, मेरा दिल चाह रहा है यहां से आगाज किया जाए। तस्बीह जहाज जब टेक ऑफ करने के लिए भागता है तो सबसे पहले रनवे पे भागता है ना, तो आप समझें कि अभी हम रनवे पे हैं, बस टेक ऑफ करने वाले हैं इस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 का बराह रास्त लाहौर का स्टूडियो, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, सियालकोट, जहां जहां तक, हैदराबाद, पिशावर, क्वेटा, जहां जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, यू मोर देन वेलकम। जहां से भी आप अपने होने का एहसास दिलाएंगे मुझे बहुत अच्छा एहसास मिलेगा। आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम और ज्यादा आपके करीब आना चाह रहे हैं, हम आपकी दस्तरस में आना चाहते हैं, बेवकत होने के लिए नहीं बल्कि नजदीकियां और बढ़ाने के लिए। वैसे तो 24/7 101 आपका साथ निभा रहा होता है, आपसे मोहब्बत के जिमरे में कह लें, आपसे तन्हाई के जिमरे में कह लें, किसी भी लिहाज से कह लें, हम हमेशा हमेशा आपके साथ होते हैं, आपके हम सफर बन के। रात के इस पहर में अब 4 घंटे तक आपका हम सफर रहमान रहेगा, आपसे साथ निभाएंगे तो बहुत अच्छा एहसास मिलेगा, यकीन करें। मैसेजेस करने के जो तरीकेकार हैं वो मैं सोच रहा हूं कि पहले बता ही दूं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, और उसे भेज दीजिए 4471 4471। दूसरा तरीकेकार, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101, हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर, ते मन का होर पासे,
1: मन का होर पासे, महरम राज तेरे हर एक फन दा,
0: महरम राज तेरे हर एक फन दा, ओ माय गॉड,
1: मन सरदार,
0: दोबारा दोबारा दोबारा,
1: दे अमन के आनो।
0: सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, यहाँ पे हमारी जरा टून जो है वो हाई रहेगी, लेकिन जैसे ही हम 12 बजे के समय में कदम रखेंगे वहां से ही आगाज करेंगे प्रोग्राम का, जहां से हम हमेशा से किया करते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के आगाज में मैं हमेशा नाम लिया करता हूँ उन लोगों का जिनके तवस्सुत से मेरी आवाज आप तक पहुंचती है। मेरे बहुत प्यारे भाई ड्यूटी ऑफिसर हैं अदील, थैंक यू वेरी मच अदील भाई, उनके साथ आज एक नया चेहरा अमान हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच अमान। एमसीआर में हाफिज हमारा साथ दिया करते हैं, थैंक यू वेरी मच। इस प्रोग्राम की सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करती हैं खदीजा मुराद साहिबा, सीनियर प्रोड्यूसर हुआ करते हैं जुबैर बशीर साहब, नगमाना साहिबा थैंक यू वेरी मच, स्टेशन डायरेक्टर लाहौर अहमद सुहेल बसरा साहब थैंक यू वेरी मच जी अदील भाई।

0: सुनते रहिए FM 101
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: FM 101, the sound of new millennium.
0: सुनते रहिए FM 101.
4: Coming up next, RJ Talk.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

RIG, once again, welcome back. June 2026. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मौसम बदल रहा है, मैं ये कहूंगा कि मौसम मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। गर्मी ऐसे ऐसे थपेड़े मार रही है कि यकीन करें दोपहर में 1 बजे के बाद तो दिल चाहता है कि घर हो, सुकून हो और कहीं से ठंडी हवा मिल जाए, है ना। अब तो ऐसा है कि रात में भी तकरीबन 3-4 बजे तक हवा जो है वो गर्म रहती है ना। मैं बस इतना कहूंगा कि ज्यादा गर्मी जो होती है वो बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आती है। आपने अपनी सेहत का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है, खासतौर पे दोपहर के वक्त में आप चाहें तो घर में पनाह ले सकते हैं। काम होते रहेंगे, जिंदगी चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है, लेकिन ये जो सेहत है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अमीर इंसान की डेफिनेशन क्या है। मैंने कहा कि जो सेहतमंद हो। उसने कहा कि यार वो ये क्या डेफिनेशन हुई, तुम ज्यादातर फिलोसफिकल ख्यालात के मालिक हो, तुम तो यही कहोगे। फिर कुछ अरसे के बाद वो बीमार हो गया। नहीं नहीं, मेरी बद्दुआ नहीं थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा है कि वाकई में वो बीमार हो गया। और फिर जब मैं उसकी तीमारदारी के लिए गया, मैंने उससे पूछा कि हाँ जी कितना पैसा लगा लिया, कहता जी पैसा तो खत्म नहीं हो रहा लेकिन बीमारी नहीं जा रही, मुझे सेहत चाहिए, मैं चाहता हूँ उसी तरह से मैं चलूँ फिरूँ, मैं तो बिस्तर से नीचे कदम रखने से भी उकता गया हूँ, यानी मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि बिस्तर से नीचे कदम रख पाऊँ, उकता गया हूँ बिस्तर पर लेटे लेटे, क्या करूँ अब मैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला अपने प्यारों पर ही बीमारियां भी लेकर आता है और बहुत जल्द तुम बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगे। इस बात ने शायद उसके अंदर एक उम्मीद भरी और वो बहुत जल्द, जैसा गुमान हो इंसान उसी तरह के नेमुल बदल आपके लिए लेकर आता है। जिस तरह का ख्याल आपके जहन में पनप रहा हो, चीजें उसी तरह से होती चली जाती हैं, ये एक बहुत जबरदस्त फैक्ट है। आप इसको कह सकते हैं कि अल्लाह ताला वही करने की कोशिश कर रहा होता है जो हम चाह रहे होते हैं, लेकिन देख रहा होता है कि हमारा फोकस कितना है उस एक ख्याल पे, उस एक ख्वाब पे, उस एक बात पे, उस एक इंसान पे। अब ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा जिक्र ना करूं मैं बीच में, है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि फोकस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, अब मुझे म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, तुम्हारे ख्यालात को ज्यादा तरजीह देने के लिए। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूं, ये बातें 12 बजे के बाद करेंगे। बाय द वे, सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, आपने अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। और वो लोग जो इस समय मुझे किसी भी शहर से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं, तो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट। ये आपकी जिंदगी की हिफाजत करने की कोशिश करती है, ना कि आपको चलान से बचाती है। एहतियात से जरा आहिस्ता आहिस्ता जाने दे, कोई बात नहीं। वो अगर निकलने की कोशिश कर रहा है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तो करने दें, अना में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बाज़ औक़ात अना में आने के बाद हम बहुत सारे गलत फैसले कर बैठते हैं, इस वजह से हमें पछताना पड़ जाता है, हमारी एक जज्बात में की हुई बहुत बड़ी गलती हमारी जिंदगी को खराब कर देती है। अपना भी ख्याल रखना है और वो जो जा रहा है बहुत तेजी से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उसका भी ख्याल रखना है, दुआ दे देनी है उसको कि खैरियत से पहुंचे। ये नहीं कहना कि देखना अभी कहीं ना कहीं इसका एक्सीडेंट होगा, ऐसा नहीं कहना। बहुत से लोग जज्बात में आकर कह देते हैं, बाज़ औक़ात जबान से निकली हुई कोई एक बात मोहताज होती है पूरा होने की, ना किया करें ऐसा, है ना। लेकिन ब्रश कर लिया करें, अच्छा लगता है, दांत साफ रहते हैं और साथ बैठा हुआ इंसान भी बुरा महसूस नहीं करता। बहरहाल आपकी बहुत सारी कॉल्स मुझे यहां पे लाइट ब्लिंक हो रही है तो मुझे मौसूल हो रही हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421110001, हमारे और आपके दरमियान राब्ते का नंबर है।
4471 पर आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। सारी चीज़ें शामिल करेंगे, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है आपने, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी डॉक्टर साहिबान। आज आप लोगों ने स्टेटस देखा है, आप सब लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब लोग हाजिरी लगवाएंगे, आज ज़रूर आएंगे यहाँ पे, कॉल्स पे आएंगे। मुझे यहाँ से शीशे की इस पार से नज़र आ रहा है आदिल भाई उधर चाय भी सर्व कर रहे हैं, हो सकता है इधर भी ले आए। कहते हैं कि दिल से की हुई यहाँ पे बात भी पूरी हो जाती है। देखिए आदिल भैया बाहर हैं, आ रहे हैं, देखा चाय लेके आ गए। थैंक यू वेरी मच आदिल भाई, सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें, जीते रहें, खुश रहें, है ना। थैंक यू वेरी मच, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। मावनत दरकार रहती और ऐसे लोग अगर साथ होते हैं तो बहुत अच्छा एहसास मिलता। दिल चाह रहा है कि एक आपको ऐसा ट्रैक सुनाऊं कि जो आपने इससे पहले ना सुना हो सकता है सुन भी लिया हो, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं भी सुनाऊं आपको। जिगर मुरादाबादी, मेरा दिल चाह रहा है पुरानी गजलें आपको सुनाऊं। आहा, जाना नहीं सुनना है।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

बहरहाल आज का सवाल आपके सामने रख रहा हूं, 11:12 पे सवाल आपके सामने रख रहा हूं। इस सवाल को लेकर हम चलेंगे, दरमियान में बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स इस सवाल के नतीजे में आते रहेंगे, हम बातें करते रहेंगे 2 बजे तक, यानी वसीम भाई के आने तक। सवाल यह है कि आखिर उम्र के किसी खास हिस्से में आकर इंसान खामोश क्यों हो जाता है। यकीन करें ये वो हिस्सा है जो आप मत समझिएगा कि यह बुढ़ापे की बात है, बाज लोग 22-23 साल की उम्र में भी खामोश हो जाते हैं, बाज लोग 32-33 साल की उम्र में भी खामोश हो जाते हैं, बाज लोग 40 साल की उम्र को आते आते आहिस्ता आहिस्ता हुजूम से अपना रास्ता बदलने लगते हैं, अपने रास्ते वीरान सड़कों की तरफ ले जाते हैं, अपना सफर वीरान सड़कों पर तय करने लगते हैं। उन्हें कब्रिस्तान के साथ गुजरती हुई गली से गुजरने में खौफ भी नहीं आता है, वो बल्कि अब शायद किसी नई मखलूक से मिलना चाहते हैं या किसी नए एहसास से मुतरिफ होना चाहते हैं। मुतरिफ कैसे होंगे, आखिर क्या वजह है कि उम्र के एक खास हिस्से में आकर इंसान खामोश हो जाता है। क्या कभी आप पर ऐसा पल आया है कि बस लड़ने का दिल ही नहीं चाहा, बहस करने का दिल ही नहीं चाहा, जीतने का दिल ही नहीं चाहा, जस्टिफाई करने का दिल ही नहीं चाहा। अगर कोई गलत समझ रहा है तो उसे समझने दिया, उसे रोका नहीं कि नहीं नहीं नहीं मैं गलत नहीं हूं, अपनी सफाई नहीं दी। क्या कभी आपके ऊपर ऐसा वक्त आया। मैं आपको एक और बार, ये जो ट्रैक है मेरे सामने जैन जुहेब का, बड़ा खूबसूरत नया ट्रैक आया है, 3:57 का ये ट्रैक है, मैं ये वक्त देता हूं आपको कि आप अपने मोबाइल फोन्स या फिर लैंडलाइंस जहां से भी आप कॉल कर सकते हैं नंबर मिलाने की कोशिश कीजिएगा और प्रोग्राम में आकर जरूर बताइएगा इस सवाल का जवाब कि क्या आप अपनी जिंदगी में कभी खामोश हुए हैं। उम्र के एक खास हिस्से में आकर इंसान खामोश क्यों होने लगता है। अगर आप उम्र के इस हिस्से को पार कर चुके हैं, इस खामोशी के दौरानिए को गुजार चुके हैं, तो मुझे जरूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है, क्यों वो कुछ नहीं बताना चाहता, क्या वो रूठ चुका होता है सबसे, क्या उसे एहसास जज्बात जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से नहीं मिले होते, क्या उसे अपनी पसंद बताने ही नहीं दी गई होती, उसे ये मौका ही नहीं दिया गया होता कि वो अपने दिल को खोल कर किसी के सामने रख पाए, उसे मुख्तलिफ तरह के डर खौफ में मुब्तला किए रखा होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। ये लाइट ब्लिंक हो रही है लेकिन आपको एक बार नंबर बता देता हूँ, वो तमाम लोग जो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी मुझे कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, 2 बार बताऊंगा, एक बार वो लोग जो पूरे पाकिस्तान से कॉल करना चाहते हैं, एक बार वो लोग जो मुझे पूरी दुनिया में कहीं से भी कॉल करना चाहते हैं। अगर आप मुझे पाकिस्तान में मौजूद किसी भी शहर से कॉल करना चाहते हैं तो मिलाइएगा 042-111-00101, 042-111-00101। अब वो लोग जो पूरी दुनिया में कहीं से भी कॉल करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, 00924211100101, 00924211001, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं जैन जुहेब का ये खूबसूरत सा जो ट्रैक है इसको सुनता हूं, आपको सुनाता हूं और फिर मैं वापसी पे आपका इंतजार करूंगा। आज मुझे नहीं पता कि मैं किस हद तक इसको मुकम्मल कर पाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं चीजें अधूरी रह जाएं तो ज्यादा समझ में आ जाती है, लेकिन इसको मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। इस सवाल को, इंसान खामोश क्यों हो जाता है उम्र के किसी खास हिस्से में, क्या आप पर कभी ऐसा लम्हा ऐसा वक्त आया है, जरूर बताइएगा मुझे। मैनू सोन ना देवे।
इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से एक इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है, उसके लिए भी इंतजार कीजिएगा।

0: Oh my god. Oh my god. बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत खूबसूरत ट्रैक. ऐसे ही दिल भर आया. लेकिन दिल बहुत खुश हो जाता है, बाज़ुकात भरने से ज्यादा खुश हो जाता है. ये वो आंसू होते हैं जो आंखों से बाहर की जानिब रुखसारों को गीला नहीं करते, लेकिन अंदर की तरफ दिल को भर देते, मन को भर देते, लेकिन बहुत बहुत खुश हो जाते. मैं ऐसे में ज्यादा खुश हो जाता हूँ. आंसू अगर बाहर की जानिब नहीं निकले, अंदर की जानिब सफर करने लगे, तो ज्यादा अच्छा एहसास मिलता है, लफ्ज मिलने लगते हैं. मैं पीता नहीं हूं, उबालने लगता हूं. इसमें आतिश का जो अमल है वो ज्यादा ज्यादा गहरा हो जाता है, वाजे भी हो जाता है. अल्फाज निकलने के लिए तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं. मैं रोक लेता हूं, मैं कहता हूं कि ये सही वक्त नहीं है. यकीन करें कि हर किसी के सामने जबान खोलने का, अपनी ये दुकान खोलने का हर वक्त सही वक्त नहीं होता. कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि आपको खामोश रहना पड़ता. आप अगर गलती पे ना भी हों, फिर भी खामोश रहना पड़ता. आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, बड़े लोग हैं आप. बड़े लोग हैं आप. मुझे कॉल कर रहे हैं, आपकी पहली कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहा हूं. मेरा दिल चाह रहा है कुछ देर के लिए इस ट्रैक को हम बैकग्राउंड पे इसी तरह से यूज करें. जरा थोड़ी सी ज्यादा फील मिल रही है, बस इसलिए. टेलीफोन लाइन पे आपकी कॉल्स मौसूल हो रही हैं मुझे, 0421100101. हमारे और आपके दरमियान राब्ते का नंबर 11:22, पहली लाइव कॉल पूरे पाकिस्तान में सुनी जाएगी, पूरी दुनिया में सुनी जाएगी. सवाल मैंने आपसे क्या पूछा, सवाल मैंने आपसे पूछा है कि उम्र के किसी खास हिस्से में या जिंदगी के किसी खास हिस्से में इंसान खामोश क्यों हो जाता है, वो बहस क्यों नहीं करता, सही होने पर, गलत ना होने पर जस्टिफिकेशंस क्यों नहीं देता, बताता क्यों नहीं है अगर उसके ऊपर तोहमत लगा रही हो, लगाई जा रही हो, कुछ भी कुछ भी. अब सिर्फ एक इस लफ्ज को मुद्दा बनाकर पूरे प्रोग्राम को बिगाड़ मत दीजिएगा. मैंने वैसे ही ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि किसी भी वजह से इंसान खामोश क्यों हो जाता है. अस्सलाम वालेकुम जी.
1: अस्सलाम वालेकुम
0: जी. वालेकुम अस्सलाम.
1: अली बाजर कराची से.
0: अली भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको बहुत बहुत मोहब्बत से मेरा सलाम.
0: अरे अली भाई थैंक यू वेरी मच, खुश रहें, आबाद रहें.
1: जी जी, क्योंकि जिस तरह अली बाजर कराची से.
0: अली भाई आप कैसे हैं, खैरियत से हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको बहुत बहुत मोहब्बत से मेरा सलाम.
0: अरे अली

0: भाई को अल्लाह लंबी उम्र अता करे। आपकी आवाज सुन के वैसे लग रहा है जैसे वो ही बैठे हुए।
1: ऐसा ही है, वो मेरे बड़े भाई और वो अगर कोई हुक्म करते हैं तो मैं वो इनकार नहीं कर सकता। तो वो और मैं ये समझें कि हम एक ही हैं, हम पूरी फैमिली एक ही होते हैं, बस अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग एहसास हैं, अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन बातें वही हैं जो सदियों से चली आ रही। क्या कहना चाहेंगे आप अली?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। और
1: हाँ, इंसान इंसान जिंदगी के किसी खास हिस्से में खामोश क्यों हो जाता है? क्या क्या ये लम्हा आपके ऊपर आया है अली?
0: आया है या नहीं आया वो तो अभी मैं लाइव तो नहीं
1: बता। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन आप उसका एहसास बताएं कि क्या क्यों होता है इंसान ऐसे?
0: एक तो ये होता है कि इंसान वो साइलेंट में हो जाता है ना, वो बड़ा तूफान उसके अंदर में होता है।
1: जब वो साइलेंट होता है तो तूफान होता है उसके अंदर।
0: और दूसरी बात, वो दुनिया से जो है ना एक खुद को बेजार समझता है और अलग बेजार हो जाता है दुनिया के ना, तब वो फिलहाल वो सोचों में होता है कि देखते हैं क्या होता है क्या होता है। तो इस तरह वो इंसान क्योंकि दुनिया को देख जाके दोस्त को यार को रिश्तेदारों को इधर उधर सारी चीजों को जब इंसान ना बेबस हो जाता है ना, फिर वो खामोश हो जाता है।
1: इसका मतलब है जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात आए हैं, वरना कोई इंसान इतनी गहराई से ऐसे बात नहीं कर सकता अली।
0: बिल्कुल, ये बड़ा तूफान होता है और अल्लाह करे ऐसे लोगों का बस खुद अल्लाह पाक ही साथ दे, वरना कैफियत बहुत बहुत बहुत खराब होती है।
1: बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि ऐसे लोगों की कैफियत बहुत मुश्किल में होते हैं वो लोग, ऐसे में उनका साथ सिवाय खुदा के कोई नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली कॉल का मजा आया, मजा आया। अपनी जिंदगी का तजुर्बा जो शेयर करते हैं ना लोग, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो बताते हैं उनकी आप बीती क्या है। इस सवाल के हवाले से जब वो अपने आप को उतार लेते हैं उस रंग में तो बहुत अच्छा लगता है। टेलीफोन लाइन पे आपकी दूसरी लाइव कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद अहमद सरफान जो
1: और अहमद भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
2: शुक्र है सर, अल्लाह पाक से।
1: मौसम का असर आप पे कैसा होता है? बुरा लग रहा है? गर्मी ज्यादा है?
2: गर्मी तो आज तो सर बहुत ज्यादा है,
1: आज तो काफी ज्यादा है। आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रिकॉर्ड किया और फील्स लाइक 50, ऐसा ही है।
2: देखें जी, ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत है।
1: नेमत है, ठीक है।
2: हाँ जी, आगे आपने देखा ये तकरीबन 15-20 दिन काफी अच्छा गुजरा,
1: बहुत बहुत मजे का मौसम, खासतौर पे ईद के अवायल में जो वक्त था वो बड़ा प्यारा था।
2: तो हम ये कहना शुरू हो गया जी, गर्मी बहुत ज्यादा।
1: हाँ, हम दरअसल बाज नहीं आते ना, इंसान है ना हम किसी एक चीज पे रह नहीं सकते।
2: ना शुक्रा है
1: इंसान। हाँ जी, सलामत रहें अली भाई, क्या कहना चाहेंगे? अहमद भाई
2: टॉपिक के हवाले से सर,
1: इंसान खामोश क्यों हो जाता है जिंदगी के किसी खास हिस्से में?
2: इसमें ना बेसिकली उम्र की कोई कैद नहीं होती।
1: बहस क्यों नहीं करता है जब वो सही है, जब वो गलत नहीं है, क्या वजह?
2: सर जब इंसान की कोई उम्मीद टूटती है ना,
1: उम्मीद जब कोई टूटती है, हाँ
2: टूटती है, तो फिर इंसान खामोश हो जाता है।
1: जब उम्मीद टूटती है यानी जिससे आप उम्मीदें वाबस्ता करते हैं, अगर वो इंसान आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता तो फिर आप खामोश हो जाते हैं।
2: इंसान खामोश हो जाता है
1: क्योंकि उसका बस नहीं चलता, क्या कर सकता है,
2: नहीं है ना इसी वजह से।
1: क्योंकि
2: वाहद अल्लाह पाक की जात ही होती है जिसके ऊपर इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए और वो
1: लेकिन उसने साथ निभाने के लिए यहाँ पे ये रिश्ते भी तो भेजे हैं ना। हेलो, लगता है कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन मजा आ रहा था आपसे बात करने का। टेलीफोन लाइन पे आपकी तीसरी कॉल, आज कॉल मिलाइएगा। नंबर मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, 0421100001। आज दिल खोल के बताइएगा मुझे वो क्या एहसास होता है, वो क्या जज्बा होता है, क्यों इंसान खामोश हो जाता है, और क्या ये खास दौरानिए के लिए होता है या फिर हमेशा के लिए हो जाता है? जब वो एक बार चुप हो जाता है तो फिर दोबारा

0: बोल लड़ाई थी एक टाइम पर, बोल लड़ाई बोल बड़े बड़े मसले बने।
1: हाँ, हो जाते
0: हैं। ऐसा आया कि हम उधर बैठे हैं खाने के ऊपर, मेरी सारी जो थी ना बिल्ली में शादी की हुई है, तो वो मुझसे सवाल करती है दफ्तर खाने के ऊपर, मुझे कहती है भाईजान पहले तो आपकी और बाजी की बड़ी लड़ाई होती नहीं होती। मैं कहा भाई मैंने अपना इलाज करा लिया।
1: अच्छा।
0: मैं कहा वो जीत गई है, मैं हार गया। और दूसरे नंबर के ऊपर कुछ चीजें ऐसी हैं, कहते हैं एक एक लफ्ज है कि पागल
1: पागल,
0: और जो कि बंदा गल नु पा जांदा ना वो फिर बड़ा कुछ समझ जाता है, वो गल नु पा गया होंदा। वैसे भी कहते हैं कि कम खाना कम सोना और कम बोलना, ये तीन क्वालिटी जिस बंदे में होना उसको वली की निशानी। और ये
1: कम खाना कम सोना और
0: कम बोलना,
1: कम बोलना ठीक है
0: जी, ये भी अगर जी एक बंदे में कोई क्वालिटी ये तीनों होना तो वो बंदे को वली की निशानी।
1: ठीक
0: है, इसमें से एक भी अपनाने की कोई जो कोशिश करें तो उसका हमें फायदा ही है।
1: बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की आपने इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच।
0: ओके सर, अल्लाह हाफिज।
1: अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टेलीफोन लाइन पे आपकी लाइव कॉल्स एक के बाद एक प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा आज। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज प्रोग्राम का वो जो एक लोगों के अंदर एक शक होता है, एक शुभा होता है कि कॉल्स रिसीव नहीं करते, आज हमारे पास बहुत टाइम है, आज आप सबकी बातें मैं सुनूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: जी अस्सलाम वालेकुम सर, लाहौर से
1: मारिया। वालेकुम अस्सलाम मारिया, क्या हाल है आपके? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी और खूबसूरत प्रोग्राम, खूबसूरत आवाज और हमेशा की तरह खूबसूरत अंदाज।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें।
2: और क्या खूबसूरत टॉपिक छेड़ा है।
1: इंसान कभी खामोश हो जाता है वाकई में,
2: इसके आप मैं क्या क्या बताऊं और आप क्या क्या सुनेंगे, इसकी जितनी गिरा खोलते जाएंगे ना आप,
1: हाँ,
2: उतने पहलू आपके सामने आते जाएंगे।
1: तो वही तो मैं चाहता हूँ कि एक गिरा मैं खोलूं और हर कॉल पे आने वाला एक एक गिरा खोलता जाए और फिर मुख्तलिफ समतों में ये टॉपिक मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करता जाए।
2: सर रूह जो है ना थक जाती है, बेचैन हो जाती है, उम्मीदें टूट जाती हैं, और जब इग्नोर किया जाता है ना किसी को, वो अपनी सच्चाइयां अच्छाइयां साबित कर करके थक चुका होता है ना, फिर वो खामोश हो जाता है। और दुनिया से यानी कोई नया रास्ता ढूंढना चाह रहा होता है,
1: कोई नया रास्ता ढूंढना चाह रहा होता है
2: जी, और वो रास्ता आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ क्या है, यानी से दुनिया छोड़कर ना उजाड़ अच्छे लगते हैं, तन्हाइयाँ अच्छी लगती हैं, जंगल अच्छे लगते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि वो इंसान खामोश है और उसे तकलीफ नहीं हो रही, नहीं ऐसा नहीं है, वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है, लेकिन जब इंसान किसी मरहले में डूब चुका होता है ना पूरी तरह, फिर उसे दुनिया जहान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कोई गलत समझे या सही समझे,
1: उसके अपने अंदर उसको बता रहा होता है कि तुम्हारा क्या दिल चाह रहा है, तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या बेहतर क्या अच्छा लगता है।
2: जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि ये नहीं है कि वो कुछ देख नहीं रहा या वो पागल है या फिर वो किसी का जवाब देने की ताकत नहीं रखता, नहीं ऐसा कुछ नहीं,
1: ठीक है,
2: बस खामोश हो जाता है, खामोशी इख्तियार कर लेता है और अपनी नई मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाता है, वो
1: नई मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाता है। मारिया थैंक यू वेरी मच, सलामत रहें।
2: अल्लाह हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ये जो लिसनर्स हैं मेरे जो हमेशा सुनते हैं, वो जैसे ही मैं उन्हें कॉल ड्रॉप करने का इशारा करता हूँ वो फौरन चला जाते हैं, उन्हें पता है कि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है रहमान भाई?
1: शहजाद साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं,
3: आपकी दुआएं। जो आपने आज मौजू रखा है ना,
1: जी जी,
3: ये देखे आदमी कोई भी हो ना, इस तरह इस लम्हे में लाजमन खुद रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
3: हाँ जी, जो शेर है इस पे जीने की मुझे भी है आरजू, दौड़ता है इन रगों में भी लहू, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, क्या कहूँ ऐ दुनिया वालों क्या हूँ मैं।
1: ठीक है,
3: जो खामोश हो जाता है ना उसका दिल अंदर से बुझ जाता है, मर जाता है, खामोश हो जाता है, वो अपनी जिंदगी पे ढूंढता है मैं कैसे गुजारूंगी। जब जब कोई भी रिश्ता होगा, औलाद का होगा, बहन भाई का होगा, जब वो उसकी सुनेगा नहीं फिर वो खामोश हो जाएगा कि इसको अपनी मर्जी करने दो, खामोश हो जाओ।
1: आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं
3: जी। यही जिंदगी का मकसद, ये जिंदगी में यही लम्हे आते हैं जो कुछ आज देर के लिए खामोश होना पड़ता है लाजमन।
1: हाँ ऐसा है, ऐसा है।
3: तो माशाल्लाह जी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं, सब आरजे के लिए दुआएं, तो मेरा सलाम जितने बहन भाई आते सबको सलाम।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच अदा साहब, सलामत रहें। टेलीफोन लाइन पे आपकी बैक टू बैक कॉल्स मैं रिसीव कर रहा हूँ, 11:45 मैं कोशिश करूंगा एक ट्रैक भी बीच में शामिल करूँ, और फिर कुछ हमारी बातें भी तो होती हैं ना, वो बातें भी तो करनी होती हैं ना। एक और कॉल, उसके बाद आपके कुछ मैसेजेस, फिर आपकी आपके लिए एक ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम
4: जी, मैं लाहौर से रिमशा, उम्मीद है आप ठीक होंगे।
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं, आप खैरियत से?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपके टॉपिक पे मैं ये कहूँगी भाई,
1: हाँ,
4: कि खामोश हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब हम दुनिया में इंसानों के रंगदंग देखते हैं ना, कि हमारे एतबार तोड़ते हैं कोई, हमारी अगर हम किसी को अपने राज बताते हैं तो वो राज किस तरह फैल जाते हैं, हमें वो तकलीफ देते हैं, हमें दुख में देख के वो खुश हो रहे होते हैं, जैसे हम अपने हवाले पेश कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हमें सबूत दिखाएं, हमें मिसाल दें, इस वजह से भी इंसान खामोश हो जाता है जब वो देखता है दुनिया को कि दुनिया हमारे साथ कैसे चल रही है। अब हम क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, मैं बहुत ऐसे लम्हे मेरे लाइफ में बहुत आए हैं कि मैं खामोश हो चुकी हूँ और हो जाती हूँ, मैं अपनी वजाहत पेश नहीं करती,
1: वजाहत पेश नहीं करती,
4: मुझे पता है ना मैं बिल्कुल नहीं करती, चाहे मुझे कोई गलत कह रहा है ना तो मैं ये नहीं कहती कि जी मैं अच्छी हूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो कहते हैं अब कह लें, क्योंकि मैं थक जाती हूँ कि मैं क्यों किसी को कहूँगी जी मैं, मेरे अंदर ये अच्छी आदत है, आप मुझे क्यों बुरा कह रहे हैं, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में अपने एतबार को टूटते हुए देखा है, और ये भी देखा है कि अगर हम किसी को अपने राज बताते हैं ना तो वो राजों को अपने पास नहीं रखते हैं, वो ऐसे फैला देते हैं, जब दुनिया के रंग ढंग देखते हैं, दुनिया के तौर तरीके देखते हैं तो हम खामोश हो जाते हैं।
1: ठीक है,
4: बस दफा दुनिया को देख कर भी हम लोग खुद बहुत खामोश हो जाते हैं, क्योंकि खामोशी जो है ना भाई काफी बड़ी चीज है, ताकत की चीज है, कि कहीं खामोशी जो है ना इंसान को ऐसे चेंज कर दे, क्योंकि ऐसा मेरे लाइफ में एक लम्हा आया था, मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, मुझे गलत कहा जा रहा था, लेकिन उस टाइम सबकी नजरें मुझ पे थी और वो कह रहे थे कि देखो इसको इतना बुरा भला कहा जा रहा है, इसे इतना कुछ कहा जा रहा है, ये बोल क्यों नहीं रही, लेकिन उस वक्त सबकी नजरें मुझ पे थी, और बाद में उन्होंने यही कहा कि ये बच्ची जो है ना बर्दाश्त कर गई, इसकी खामोशी जो है ना बहुत कुछ कहती है। आप यकीन करें कि मेरी लाइफ में बड़े ऐसे लम्हे आए, अभी मैं 19 की हूँ, लेकिन मैंने खामोशी जो है ना बर्दाश्त करना सीख लिया, सब्र करना सीख लिया, कि मैं क्यों किसी को कहूँ, कि मेरा खुदा तो मुझे देख ही रहा है ना मैं कैसी हूँ, मेरे दिल की बातें तो वही जानता है ना,
1: असल बातें तो सिर्फ वही जानता है,
4: मैं दुनिया के सामने क्यों रखूं जी।
1: हाँ, असल बातें तो सिर्फ वही जानता है,
4: बिल्कुल वही जानते हैं, हम दुनिया को कहते रहेंगे नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई ऐसी गलती नहीं है, वो यही कहते हैं हमें सबूत ला के दिखाओ, हमें सबूत दिखाओ तुम ऐसी नहीं हो, वो नहीं, ऐसे दुनिया वाले करते हैं।
1: हाँ ऐसा करते हैं,
4: हम दुनिया को देख के खामोश हो जाते हैं।
1: ठीक है,
4: इसलिए हमें खामोशी आ जाती है,
1: फिर हम जस्टिफाई नहीं करते किसी को,
4: बिल्कुल भी नहीं करते।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रिमशा।
4: बार दफा ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने माँ बाप के सामने भी काफी ऐसे लम्हे होते हैं जिनमें खामोश हो जाते हैं, लेकिन हर बार खामोश नहीं होना चाहिए, अपने हक के लिए इंसान बोलना चाहिए कि हाँ जहाँ हमें बोलने की जरूरत है वहाँ बोलें, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं बोलना चाहिए, खामोशी भी बहुत बड़ा काम कर जाती है।
1: लेकिन यहाँ पे एक और बात कहना चाहूंगा, माँ बाप के हवाले से बात नहीं है ये आम
4: नहीं,
1: काम करने के हवाले से आपकी
4: ना ये देखें
1: जी
4: के अब माँ बाप भी कुछ ऐसा काम कर देते हैं औलाद, यानी वो जो औलाद को नहीं पसंद होता तो वो उसके उस लम्हे से कह रही हूँ कि बच्चे वहाँ भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि प्लीज अब थोड़ा सा तो उनको कहे ना कि मामा पापा इससे मुझे तकलीफ मिलती है, इस ये बात भी इसमें भी खामोश होना चाहिए कि अपने हक के लिए तो इंसान बोल ही पड़ता है ना।
1: नहीं, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, ये बात बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बात मैं कहने वाला हूँ ये माँ बाप के लिए लागू नहीं होती, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ में किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दोस्त अहबाब हैं आपके, एक ख़ास हद तक आपको महसूस होता है कि आपकी खामोशी असर नहीं कर रही और आप अब दिल बर्दाश्ता भी हो चुके हैं अपनी ही खामोशी से, तो फिर भी आप खामोश रहते हुए वहाँ से किनारा कर जाएं, वहाँ पे ना रहें जहाँ पे आपकी आपको इंसल्ट महसूस हो रही है,
4: वैल्यू नहीं दी जा रही, इज्जत नहीं दी जा रही, तो वहाँ से इंसान को किनारा,
1: और खास तौर पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी पहले इज्जत हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको गिराना चाह रहे होते हैं सेम उस जगह पे जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट आपकी इज्जत बनी हुई होती है, अल्लाह ताला ने बनाई हुई होती है, वो किसी न किसी मुख्तलिफ मुहर्रिकात के साथ आपको गिराना चाह रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आप वहां से भी खामोशी से गुजर जाएं और उस जगह पे वापस पलट कर ना आए। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है जो ऐसा करते हैं कि किसी इंसान को वहां पे उसकी इज्जत नफ्स को पामाल करते हैं जहां पे उसकी इज्जत बनी हुई होती है, यकीन करें कि खुदा ऐसे लम्हों को कभी नहीं भूलता, और चाहे उन्होंने इज्जत पामाल कर दी हो, एक वक्त ऐसा आता है कि सबसे मुश्किल घड़ी जब उन लोगों पे आती है जिन लोगों ने किसी की इज्जत नफ्स को उस जगह पे पामाल किया होता है जहाँ पे उसकी इज्जत बनी होती है, अल्लाह ताला उससे भी हजार दर्जे ज्यादा करके उनकी बेइज्जती करता है। वहां से उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि मौत भी नहीं आएगी, लेकिन ये वाला लम्हा गुजारना भी मुश्किल है, मौत से भी बदतर है। तो ऐसे लोगों को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बहरहाल
4: अगर भाई ऐसा हो, अगर कोई इंसान हमें बार बार टॉर्चर कर रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, हम खामोश हो, और क्या बार दफा वहाँ पे हमें मतलब दिल से इंसान के आह निकल जाती है, बदवा निकल जाती है, क्या वो देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए इंसान?
1: ये दरअसल इंसान ये इंसान अपनी जात की हद तक जान बूझ कर नहीं देना चाह रहा होता, ये दिल से निकल जाती है। आप इस बात पर गौर करें रिमशा कि ये देना नहीं चाह रहा होता वो बद्दुआ, वो तो निकल रही है, उसका दिल इतना ज्यादा मजबूर हो गया है उस गम से उस दुख से कि वो गलती से भी नहीं, वो उसके अंदर से बस यूं ही गैर इरादतन, एक है इरादतन कोई काम किया, इरादा करके किया, जानबूझ कर किया, एक है गैर इरादी तौर पर आपने सोचा नहीं लेकिन दिल से आह निकल गई, वो तो निकल गई ना, फिर वो तो अर्श को हिलाती है,
4: यानी वो फिर उसे बीच में नहीं मिलाया जाएगा ना?
1: हाँ बिल्कुल भी नहीं,
4: क्योंकि उसको इसलिए ये पूछा है कि मैं बार दफा मैं बहुत ज्यादा वो जाती हूँ, मैं देना नहीं चाह रही होती, लेकिन दिल मेरा इतना,
1: आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है,
4: निकल जाता है,
1: आपकी गलती नहीं है, आप बोलना चाह रही होती है, लेकिन एक ऐसे लम्हे में जहाँ पे बोलना भी आप अब छोड़ दिया, आपने खामोश रहना शुरू कर दिया, फिर भी दूसरे इंसान को समझ में नहीं आई कि यार ये जो लड़की है ये क्यों खामोश हो गई है, चाहे वो ये सोच रहा हो कि ये शायद वाकई में गलत है इसलिए खामोश हो गई है, वो चाहे और ज्यादा सुनाना शुरू कर
4: दिया है मुझसे, ये डर चुका है, ये जवाब नहीं दे रहा,
1: जवाब नहीं दे रहा, यस एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ऐसे लम्हे में जो दिल से निकल जाती है निकल जाती है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, और मैं ये कहूंगा कि ऐसी जगह से आपको फौरन से निकल जाना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए, ये सोचे बगैर कि ये सबसे बेहतरीन मेरे पास हल है, इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा हल नहीं बचता है, ये सोचे बगैर आपको उस जगह से निकल जाना चाहिए। वो जो तख्लीककार है आपके लिए बहुत बेहतर, उससे भी बेहतर बनाया हुआ हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बात वालदैन के हवाले से नहीं कर रहा मैं, ये बात घर के हवाले से नहीं कर रहा मैं, अगर उस हवाले से है तो वो एक डिफरेंट उस पे टॉपिक पे वो बात हो सकती है। ये बात आम तौर पर हम जो किसी से दिल लगा लेते हैं, किसी से मोहब्बत में आ जाते हैं, किसी को अच्छा समझने लगते हैं, बाज़ औकात मियां बीवी के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हो जाते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि कभी कभी थोड़ी सी दूरी बाज़ औकात रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत भी कर देती है, या फिर वो बता देती है कि मर्ज़ का इलाज हो चुका है।
4: जी बिल्कुल ऐसा ही
1: है। थैंक यू वेरी मच रिमशा, बहुत लंबी कॉल।
4: ओके, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, सभी सुनने वाले
1: समातों को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये लंबी कॉल हो गई, बस मैं थोड़ा सा थक भी गया हूँ। वैसे भी 11:22 से आपकी लाइव कॉल चल रही है, 11:54 हो गए। ये ट्रैक आपकी समातों की नजर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मूड को चल करते हैं, 12:00 फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। ओए होए, वाह क्या खूबसूरत मुस्कुराहट है निमरा मेहरा की।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: FM 101, हमारे दिल की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

कराची, सियालकोट, जहाँ जहाँ पे एफ एम 101 की ट्रांसमिशन के थ्रू मेरी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँच रही है। आपके मेज़बान का नाम रहमान अनवर है और प्रोग्राम है इस समय अधूरी बात है। अभी नाइट थेरेपी को अलविदा किया है और अधूरी बातों का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक वही है क्योंकि अभी उसका 1% भी डिस्कस नहीं हो पाया। बस वो मिले जुले जज्बे जो हमने सुने हर जगह, वो ही हमने एक्सपीरियंस किए बहुत से लोगों की कॉल्स में, है ना। तुम्हारा अच्छा है कि जब तुम्हें बेहतर लगे आ जाते हो। क्या इतना काफी नहीं है कि आ जाते हो? थैंक यू। तुम्हारी याद के साए मेरी बर्बाद दहलीजों के कंधों से लगे, हैरान कच्ची सिसकियों को गुदगुदाते हैं। मैं अपने वक्त की बेसाख्ता खिड़की से बाहर झांकता हूं, दूर तक उलझी हुई जख्मी फरामोशी कोई हिरनी बनी, बेचारगी की डगमगाती रह गुजर पे दौड़ती है। शाम ढल आई है, ये ऐसा वक्त है, ये ऐसा वक्त है जब गीत भी वापस पलटते हैं। मेरे दामन से जो आंसू मेरी आंख तक आए थे वो वापस गिर रहे हैं। हूक की शायद कोई मंजिल नहीं होती, ये दुनिया प्रीत का कच्चा घड़ा है। रात की नरमी तुम्हारी सांस की आवाज तक पहचानती है। तुम बहुत ही बख्त वाले हो, ये बैरन रात की नरमी तुम्हें महसूस कर लेगी।

सवाल मैंने आपसे पूछा है कि बाज़ औक़ात इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वो मुकम्मल खामोश हो जाता है, जब वो कुछ भी बताना नहीं चाहता, कुछ भी जताना नहीं चाहता, कुछ भी कहना नहीं चाहता, बहस नहीं करना चाहता, दलील नहीं देना चाहता, मनाना भी नहीं चाहता, इंसान बस खामोश हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया भी था, बाज़ औक़ात इंसान खामोशी को सजा नहीं बल्कि पनाह समझने लगता है। इंसान ये समझ जाता है कि जिंदगी के शुरू में या ताल्लुक के शुरू में इस इंसान की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, जो जो उम्र आगे बढ़ती गई, जो जो ताल्लुक मुख्तलिफ रास्तों को, मुख्तलिफ फासलों को तय करता गया, ऐसा महसूस होने लगा कि तन्हाई अपने आप ही मेरे अंदर बसेरा करने लगी है, क्योंकि शायद वो इंसान जान गया है कि हर साथ सुकून नहीं देता, हर ताल्लुक ताल्लुक नहीं होता, हर गुफ्तगू समझबूझ पैदा नहीं करती। बाज़ औक़ात इंसान सिर्फ इसलिए भी खामोश हो जाता है कि उसने बहुत शोर देख लिया होता है, बहुत शोर बर्दाश्त कर लिया होता है, बहुत वादे सुने होते हैं,

0: बहुत दावे सुने होते हैं, फिर जब इन दावों को टूटते हुए देखता है, जब जाने पहचाने चेहरों को अनजान और बदलते हुए देखता है, उसके अंदर ये एहसास उसी दिन पैदा हो जाता है, अब बस, अब मजीद कुछ साबित नहीं करना, ये तुम्हारी बात है। ये तुमने जो एक लाइन में, एक लफ्ज में मुझे बताया था कि अगर प्रायोरिटी कभी कभी चेंज हो जाती है तो इंसान जब अपनी प्रायोरिटी को महसूस करता है कि अब दूसरे नंबर पे, अब शायद लास्ट नंबर पे, अब शायद है ही नहीं, तो फिर इंसान खामोश हो जाता है। बताकर क्या फ़ायदा, समझा कर क्या फ़ायदा, क्यों सफाई लेनी उससे, क्यों उसको ये तकलीफ़ देनी। अपने दिल के अंदर ही बहुत ज़्यादा जबर करके, सब्र करके बर्दाश्त कर लेता है, फिर इसके बाद हर किसी के सामने अपना दिल नहीं खोलता। किसी भी इल्जाम के जवाब में सफाई नहीं देता। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, ये जो खामोशी होती है ना, ये अचानक नहीं आती, ये बरसों की जियारत से, रियाजत से, बरसों के तजुर्बात से, मुशाहिदात से फासला तय करती है, सफर करती हुई आखिरकार खामोशी तक पहुंचती है। ये अचानक नहीं आती। अच्छा, अब खामोशियों की भी बहुत सी किस्में होती हैं, कुछ धोखों के बाद पैदा होती हैं, कुछ बेकदरी के बाद, कुछ मुसलसल गलत समझे जाने के बाद, और कुछ उस वक्त जब इंसान को यह एहसास हो जाता है कि दुनिया अक्सर आपकी हकीकत नहीं, सिर्फ आपका रद्द अमल देखती है। उसके बाद फिर इंसान अपना रद्द अमल कम कर देता है, अपने रिएक्शंस कम देने लगता है। बहुत से लोग ये कहते भी हैं, और अभी कुछ कॉल्स में भी मुझे ये बताया गया कि जो लोग अंदर से बहुत गहरे होते हैं या फिर वली होते हैं, वो अक्सर कम बोलते हैं, खामोश ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ख्यालात का एक समुंदर चल रहा होता है। वो हर चीज को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। वो लफ्जों के वजन को समझते हैं, वो लहजों के जख्म पहचानते हैं, वो खामोशी की जबान जानते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उन्हें महसूस होता है कि हर इंसान उनकी गहराई को समझने की सलाहियत नहीं रखता, फिर वो अपने आप को बचाना शुरू करते हैं। ये खुद गर्जी नहीं होती, ये अपनी रूह की हिफाजत होती है। हर किसी के ऊपर निछावर नहीं किया जाता, हर किसी को बाल्टी पानी की नहीं दी जाती, हर किसी को अपने अंदर के अहवाल के बारे में नहीं बताया जाता। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दूसरों से नहीं थकता, कभी कभी अपनी ही कोशिशों से भी थक जाता है। हर बार ताल्लुक बचाने की कोशिश, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश, हर बार समझाए जाने की कोशिश, ये सब इंसान को अंदर से खामोश करते चले जाते हैं। एक के बाद एक, बैक टू बैक इंसान के अंदर मुख्तलिफ तरह के जख्म डालते जाते हैं। और फिर एक उम्र के बाद इंसान के नज़दीक सुकून सही साबित होने से ज्यादा अहम हो जाता है। ओह माय गॉड, यस, वो जान लेता है कि हर सच सुनने वालों के लिए नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि हर बात हर समझ के लिए नहीं होती, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो समझ में आ जाती, उसे रख लिया करें, बाकी सारी बातों को जाने दिया करें। वो ये जान लेता है कि हर दर्द बयान करने के लिए नहीं होता और हर एहसास को अल्फाज नहीं देने चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले मुझे कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अब बात नहीं करते, आप कॉल्स रिसीव नहीं करते, आप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, आप बताते नहीं हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। पहले अक्सर हम आपसे सवाल पूछ के जवाब ले लिया करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करते। इसमें मेरी कोई अना नहीं है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, इसमें कोई अना नहीं है। बस बाज़ औक़ात इंसान नहीं बताना चाहता, नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं कहना चाहता। इंसान के अंदर यह कैफियत पैदा हो जाती है। क्या आप कभी ऐसी कैफियत से गुजरे हैं? क्या आप कभी ऐसे एहसास से गुजरे हैं कि एक खास जिंदगी के हिस्से में खामोश हो गए हों? आपने सवाल करना और जवाब देना दोनों छोड़ दिया हो। ऐसे लम्हे में आपने क्या किया, क्या महसूस किया? क्या आप इस समय भी इसी लम्हे में हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरे ऊपर 7-8 माह से है ये कैफियत मेरे ऊपर, और तुम्हारे ऊपर तो बहुत अरसे से है, ऐसा है ना? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? आप खैरियत से?
1: सर कैसे? ठीक ठाक है, खैरियत से
0: हैं जी। अल्लाह का बड़ा करम है जी, बड़ा एहसान।
1: सबसे पहले तो अंजलि साहब की कॉल का भी मुझे इंतजार है, अंजलि साहब आएंगी।
0: अच्छा,
1: उसका भी इंतजार है, नादर साहब और आपके तमाम कॉलर जो है ना खुश बाश होंगे
0: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह
1: यही रहती है हमेशा।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
1: आपने एक तो आंधी चल रही है ईएमई वाली साइड पे,
0: आंधी चल रही है?
1: हाँ आंधी चल रही है।
0: कहाँ पे चल रही है
1: ज्यादा? आंधी आंधी
0: कहाँ पे चल रही
1: है? ये ईएमई वाली साइड जो ना है ठोकर ने अपडेट कर दी।
0: अरे लाहौर के अंदर?
1: हाँ लाहौर के अंदर बिल्कुल।
0: अरे
1: अभी थोड़े 5-10 मिनट हुए हैं
0: बस, इधर को आ ही जाए।
1: हाँ जा, तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है आज छेड़ा है सर। बात ये है कि जब इंसान थक हार के अल्लाह के आगे घुटने टेक देता है कि मेरी मुसीबत बस नहीं चल रहा,
0: बस नहीं चल रहा मेरा,
1: हाँ बस नहीं चल रहा, तो इंसान खामोशी अख्तियार कर लेता है।
0: फिर इंसान खामोशी अख्तियार कर लेता,
1: अख्तियार कर लेता है अल्लाह अल्लाह कह गए
0: मेरा बस नहीं चल रहा। ओह माय गॉड क्या लफ्ज है,
1: मेरा बस नहीं चल रहा है, चाहे वो आगे बेटी है या बेटा है या
0: हाय हाय हाय मेरा बस नहीं चल रहा। ये बड़ा अच्छा लफ्ज, ये बहुत अच्छी लाइन है, सच कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी लाइन। मेरा बस नहीं चल रहा, उसके बाद वो फिर अपने रब के आगे सजदा रेज हो जाता
1: है। इसके बगैर तो फिर चारा ही नहीं रह जाता ना बंदे का,
0: फिर इसके बाद कोई चारा होता ही नहीं है ना, कोई और है ही नहीं जो उस सवाल का हल या जवाब निकाल पाए।
1: अगर बहसते जाएंगे लड़ते जाएंगे तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं,
0: रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं।
1: हाँ तो बात दूर तक चली जाती, हो सकता है कि इंसान बॉर्डर तक भी बात चली जाती है। आज दौर ऐसा चल रहा है कि वालदैन बहन भाई एक दूसरे के हाथों मर रहे हैं, ठीक है। एक जायदाद जो है ना बोलते हैं ना अनवर रहमान अनवर साहब
0: जी,
1: एक बच्चे जो होते हैं ना औलाद होती है ये भी फितना है, और जो जायदाद होती है ना
0: जी
1: पैसा है तो दूसरे के पास वो पैसा नहीं है तो बंदा ना बड़ी हसरत से देखेगा, चाहे वो भाई जी
0: हाँ जी
1: या दोस्त है या कोई रिश्तेदार है, उसके जहन में बहुत कुछ आएगा कि मैं ये सब कुछ जो इसके पास है ना वो मेरे पास आ गया।
0: सही कह रहे हैं,
1: अगर उस बात पे जाएंगे तो वो बहस बस जब भी होगी बहस होगी समझाने वाली बात। अब ये अंदाजा लगा कि मेरे पास 2 गारे या 3 गारे, दूसरा भाई कहेगा कि ये उसके पास कुछ नहीं, उसका मर्जी होगी कि इसके घर जो है ना 2 जो है ना ये सेल कर दे, वो पैसा मुझे दे दे।
0: ये बात सही कह रहे हैं, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: तो इसी बात पे झगड़े शुरू हो जाते हैं हम, ठीक है। अल्लाह हाफिज
0: जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम,
2: कैसे हैं मामा?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। अनिला आप कैसी हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं
2: अरे
0: क्या बात।
2: अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं मांग रही थी।
0: हाँ दुआएं कबूल हो जाती हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैंने बोला था कि आपको कोई लेफ्ट या राइट साइड से अगर ओवरटेक कर रहा है तो प्लीज ये मत कहें कि आगे जाके देखी होनी है वजहगा किसे एक्सीडेंट होएगा या ऐसे मत कहा करें। कभी कभी आपकी दुआ कबूल भी हो जाती है, पता नहीं वो कितनी जल्दी में हो, उसको जाने दिया करें, कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ कर दिया करें कि खैरियत से घर पहुंच जाए।
2: मैं ऐसे मौके पे कहती हूँ अच्छा भाई तुम जल्दी है तुझे निकल जा, अल्लाह खैर खैरियत रखे, जहाँ भी जा रहा है खैर से कौन।
0: हाँ खैर से, सही कह रही हैं,
2: ऐसी ही दुआ देनी चाहिए बेशक, बिल्कुल।
0: जी अनिला,
2: टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त, मेरा फेवरेट, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की बात।
0: ठीक है,
2: जिंदगी के बहुत से मामला होते हैं, बहुत ही सिचुएशन ऐसी आ जाती है, कुछ उम्र के साथ साथ कुछ लोगों में आ जाती है बातें,
0: इसमें उम्र का जरूरी है कोई हिस्सा हो या फिर
2: नहीं,
0: ये
2: नहीं।
0: किसी भी उम्र के हिस्से में आ सकती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत से यंग लोग देखेंगे वो इतने जिंदगी में इस कदर डिप्रेस हो के हार चुके होते हैं। जब वो हार जाते हैं तो वो हार को इसी सूरत में मान लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, और वो खामोशी उनकी बताती है कि वो हार गए हैं और वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि ना कोई क्वेश्चन करते और ना कोई आंसर देते, वो खुद ही खुद में अपने ही आप में मसरूफ रहते हैं अपने रब के साथ।
0: सही,
2: और वो इस खामोशी को पसंद करते हैं, वो कहते हैं ये ज्यादा अच्छी है, हमारा अल्लाह हमसे गुफ्तगू तो कर रहा है, हमें कोई तसल्ली तो मिली, एक सुकून तो है, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा, और एक मुसलसल सुकून चल रहा है मुसलसल खामोशी की सूरत में। कुछ लोग ऐसे भी हो जाते हैं और कुछ लोग वक्त जाते जाते जब उन्हें समझ आती है कि अब मेरी वो कदर और अहमियत नहीं है,
0: अब मेरी कदर और अहमियत
2: नहीं है
0: और मेरा बस भी नहीं चल रहा है,
2: और मेरा बस चलता ही नहीं
0: कि मैं उसको ये एहसास दिलाऊं कि मेरी ये अहमियत है, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं, करती हूं।
2: लेकिन वहां उनका बस नहीं चल रहा, तो इसलिए भी वो खामोश हो जाते हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि मेरी जरूरत नहीं।
0: अब उसे पानी में घोल कर या किसी मशरूब में घोल कर तो पिलाया नहीं जा सकता कि ये याद रखो
2: क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि अब उसकी जरूरत
0: नहीं है,
2: तो इसलिए वो खामोश हो जाता है, वो एक कोने में यूं एक डेकोरेशन पीस की तरह बैठ जाता है, उसको खामोश था एक मुजस्मा, वो सब कुछ देख रहा होता है।
0: अगर ये कैफियत दोनों तरफ से हो अनिला, अगर दूसरा इंसान भी खामोश हो चुका हो लेकिन इस वजह से नहीं कि उसकी अहमियत नहीं दी जा रही उसे, या उसका हिस्सा उस तक नहीं पहुंचाया जा रहा मोहब्बत की सूरत में या इज्जत की सूरत में या फिर टाइम की सूरत में, लेकिन वो फिर खामोश हो बस, और दूसरा इंसान भी ये समझ ले उसकी बात ना करने की वजह, उसकी दूरी की वजह शायद मुझे प्रायोरिटी ना देना है, शायद मुझे मेरी बात का वजन ना देना है, हक ना देना है, उसको ये गलत फहमी हो जाए, फिर क्या किया जाए?
2: इसमें बाद का ऐसा होता है रहमान कि दोनों तरफ ये समझ आ रहा होता है कि शायद हम सिर्फ जरूरत हैं।
0: ना दोनों तरफ नहीं, कोई एक सोच रहा हो लेकिन दूसरा किसी खास टाइम स्पेस के अंदर उलझा हुआ हो।
2: हाँ ये, लेकिन जैसे मैं समझ रही हूँ, मैं अब सिर्फ इनकी जरूरत, ठीक है, बाद का वो भी ये समझ रहे थे मैं इसकी जरूरत हूँ, ठीक है, दोनों तरफ ये चल रहा होता है, और हम एक अगर आप अपने अपनी तरफ सोचेंगे ना तो मैं ये सोचूंगी कि इनको क्या, ठीक है जैसे भी चल रहे चलने दो, इनको क्या, मैं तो जरूरत हूँ ना, बच्चों की भी हूँ, खानन की भी हूँ, घर की जरूरत हूँ मैं, मुझे घर चलाना है, इसलिए घर को लुकआफ्टर मैं कर रही हूँ, मैं तो जरूरत हूँ सबकी, जितना मैं कर रही हूँ ठीक है, जब मैं नहीं करूंगी तो फिर जब मेरी जरूरत एक को मेरी जरूरत नहीं रहेगी तो फिर मैं कोने में बैठ जाऊंगी, खामोश हो जाऊंगी, चुप हो जाऊंगी, बस ऐसे ही मर्द भी सोचता है कि भाई मैं इनकी जरूरतों में कमा के दे रहा हूँ, ला के दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अब मैं कमा नहीं रहा हूँ या मैं ला नहीं दे नहीं रहा हूँ कुछ ला के, मैं कुछ करने जोगा नहीं रहा, मैं तो बस उन एक बस हार के थक के वो माइक्रो सिस्टम में आ गया, ओ भाई ये कर दो भाई वो कर दो, सुनी कोई नहीं रहा भाई, मैं बेबस हो बस में बैठ गया,
0: बेबस हो गया हूँ,
2: बेबस हो गया,
0: अब उनको लगता है कि मेरी अहमियत नहीं है कोई,
2: अब मैं खामोश,
0: अब मैं इनकी जरूरियात नहीं पूरी कर पा रहा या इनकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर पा रहा, तो अब मैं इनके लिए कोई वक्त भी नहीं रखता।
2: ये रियल हकीकत में ऐसी चीजें
0: हो रही हैं, हो रही हैं,
2: अब बहुत से लोग, अब कुछ लोग ऐसे हैं, कोई बेटा है या बेटी है, बाज़ुकात उसके पर कोई ऐसा फेस आ जाता है वो हम छोड़ रहे हैं, यंग लोग।
0: आजकल सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है अनिला, इंसान एक छोटी सी पोस्ट करता है और उस इमोशन को महसूस करने वाले लोग धड़ाधड़ उसको आगे शेयर भी कर रहे होते हैं और इसी तरह मुझ तक भी पहुंची। अभी उसकी ऑथेंटिसिटी मैंने वो चेक नहीं की, अभी मैंने ये नहीं चेक किया कि वो रियलिटी में इसी तरह से ही है या नहीं है, लेकिन एक ख्याल गुजरा कि किसी ने अगर ये लफ्ज़ लिखा है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। उसने बताया कि वो एयरफोर्स का पायलट रह चुका है बहुत अरसा पहले, उसको मौका नहीं मिल पाया किसी भी जंग में शरीक होने का, लेकिन अब वो बहुत बूढ़ा हो गया है और पिछले 3 दिन से उसके बेटे ने उसको बहुत मारा है और ऐसी सूरत में कि जब वो होश में भी नहीं होता था तब भी वो उसको मारता था, उसकी नाक की हड्डी तक उसने तोड़ दी। बुजुर्ग हैं वो और उनकी पिक्चर भी सामने लगी हुई है और वो आगे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं बोलकर, और मैं शर्म से डूबता चला जा रहा हूँ, जमीन में गड़ता चला जा रहा हूं ये सोचकर, चाहे वो सच्चा एहसास है या नहीं है या सिर्फ व्यूज लेने के लिए है, लेकिन मैं इस हकीकत को बिल्कुल नहीं धुतकार सकता, बिल्कुल गलत नहीं कह सकता कि ऐसा है, ऐसा है कि वो नौजवान बच्चे अपने वालदेन के साथ, अभी एक साहब आए थे उन्होंने भी ये बात की थी, माँ बाप बेटा बाप अपने या फिर बेटे माँ बाप अपने आपस में एक दूसरे के साथ लड़कर मर रहे हैं।
2: ऐसे बहुत सी जगहों पे हो रहा है, ये कुछ वाकयात मैंने भी हकीकतन सुने हैं और देखे भी कुछ लोगों में मैंने देखे हैं कि एक लड़का,
0: और उसका बुजुर्ग का ये जुमला भी था आखिर में कि मतलब पहले हम बाहर से आने वाली कुव्वतों के खिलाफ लड़ते थे, आज सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर मेरे खिलाफ एक हमला किया गया मेरे ही बेटे की जानिब से और मैं बच नहीं पाया, लेकिन मैंने किसी तरीके से 3 दिन के बाद भाग कर कहीं पे पनाह ले ली है। ऐसी बातें अगर दिल में आ जाएं तो सारे रिश्ते और सारी बातें वहां पे खत्म हो जाती हैं। इंसान अपनी जिंदगी के वो जो होने का एहसास है उसको भी नकार रहा होता है कि ऐसा क्यों है।
2: ये देखिए ना आप, यहाँ पे फिर वो वक्त आ जाता है कि इंसान चुप हो जाता
0: है, हाँ फिर उसके बाद खामोश हो जाता है,
2: किसी जगह पे भी नहीं चल पा रही, वो बेबस हो गया, फिर यहाँ पे वो खामोशी नहीं इख्तियार करेगा तो क्या करेगा, वो गुमनामी की जिंदगी की तरफ नहीं जाएगा तो क्या करेगा, फिर वो चाहेगा मैं छुप जाऊं, मैं दूर हो जाऊं, तन्हा हो जाऊं, कोई भी ना रहे मेरे पास। जब एक अपना खून का रिश्ता आपको इस कदर हर्ट करता है तो आपको किसी का भी एतबार नहीं जाता और फिर किसी पे भी आपका दिल नहीं जाता कि इस पे एतबार कर लूं या इसके साथ रह लूं, उस वक्त आप बुरी तरह से टूट के आपके सब चीजें जज्बात सोचे मजबूत हो चुकी होती
0: हैं,
2: फिर आप तन्हा हो चुके होते हैं और खामोश हो चुके, और ये एक हकीकत है। मैंने बहुत 2-3 वाकयात मैंने भी देखे जाने हैं कि एक बाप को मारा पीटा गया इसलिए कि वो काम नहीं कर सकता, वो कमा नहीं सकता और ना अहल औलाद ना लायक औलाद, अपने पैसों पे अपने आप के तो गुजारे करती है लेकिन बाप को कहती है जाओ जाके खुद कमाओ, उस बाप को जिसने सारी जिंदगी उनको पाल को उसके इतना किया। तो ये बहुत सारे वाकयात हैं इस तरह के हमारे यहाँ हो रहे हैं, बहुत सी जनरेशन हमारी बहुत बेरा रवि में जा रही है।
0: थैंक यू वेरी मच अनिला,
2: मैं बहुत परेशान होती हूँ सुन के, बहर आपका टॉपिक बहुत खूबसूरत है और इसको जिस जिस तरफ से भी आप देखेंगे ना आपको बहुत कुछ मिलेगा,
0: बिल्कुल ऐसे ही।
2: अब मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका है, एक बार मैं 3 माह के लिए खामोश हो गई थी, रमान बिल्कुल खामोश हो गई, मेरे साथ वाकया कुछ ऐसा हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मेरे सारे टेस्ट क्लियर थे, बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मैं खाना पीना भी छोड़ गई, बात करना भी छोड़ गई, कोई सवाल नहीं पूछती थी, कोई जवाब नहीं देती थी, सिर्फ देखती रहती थी,
0: यानी रियलिटी में खामोश हो गई।
2: हाँ बिल्कुल खामोश हो गई, सब मुझे बुलाते पूछते भी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था, मैं खामोश बैठी रहती थी और सब कहते थे, बल्कि फैमिली में कभी इसको बताया जाए तो कहा जाता तो बिल्कुल बुत बन गई।
0: उसकी वजह क्या होती है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नजदीक क्या वजह रही?
2: मैं माउफ हो चुकी थी पूरी तरह से, ज़हनी तौर पे ट्रेजेडी ऐसी हो गई या कोई मामला ऐसा हो गया, मैं माउफ हो चुकी थी।
0: यानी कोई कोई लफ्ज़ ही नहीं था ज़बान पे?
2: नहीं, कुछ भी नहीं।
0: उसके बाद कुछ सुझाई नहीं दे रहा था?
2: बिल्कुल बिल्कुल दिमाग बंद हो चुका था और मैं खामोश सबको देख रही थी। मुझे पता होता था ये गिर गया, ये बन गया, ये रखना है, ये उठाना है, मेड ये कर गई है, मेड वो कर रही है, हस्बैंड ने ये किया था, वो कह गए हैं ये करना है, बच्चे ये कह रहे थे, बच्चों ने ये कर दिया। मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देखती रहती थी खामोश।
0: ऐसे में आपका बेटा फखर तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया होगा कि ये मेरी मामा को क्या हो गया।
2: बहुत ज्यादा, आप सोच नहीं सकते कि वो सोता नहीं था। वो हर वक्त मेरे पास बैठा रहता था, एक टाइम बीच में आता था कि मेरा सांस बंद हो जाता।
0: ऐसी सूरत हाल में बाज़ुकात आपके कुछ करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनकी बिना पर आपकी खामोशी की ये जो एक रोज़ा होता है ये टूट जाता है, उनकी खुशियों के लिए या फिर उनके एहसास को बहुत करीबी से देखने के बाद कि किसी को है मेरा एहसास।
2: ये कुछ कुदरतन ऐसा था, मेरे अंदर से कुछ ऐसी फील थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बंद हो चुकी थी। बेटा रो रहा है पास बैठ के, पूछ रहा है हमें क्या मसला, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हुई है क्या, उसके किसी भी क्वेश्चन का मेरे पास कोई हाँ ना में भी जवाब नहीं होता, मैं सबसे देखती रहती थी। बेटी पूछती थी, हस्बैंड कहते थे, इवन के मेरे मुंह में निवाले डाले जा रहे हैं, मेरे पैर दबाए जा रहे हैं, मुझे हर तरह से हर आसाइश दी जा रही है, लेकिन मैं देखती रहती थी और ना मैं कुछ खाती थी ना मैं कुछ बोलती।
0: ऐसे वक्त से जब आप गुजर गई, यहाँ तक किस तरह से पहुंची कि दोबारा से बात करना है का आगाज हुआ?
2: यही तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरी समझ से बाहर थी। कुदरतन, पता नहीं कुदरतन क्या हुआ मुझे कि मैं वापस आई। मेरी आवाज सुनने के लिए लोग बेचैन होते थे कि मैं कुछ बोलूं। मैं 3 माह बिल्कुल बुत बन चुकी थी, मूर्ति बन के बैठी रहती थी, देखती रहती थी। मैं ये भी नहीं कहती थी कि देखो ये ना, नहीं मैं ये भी नहीं बोलती थी, खामोश। एक खामोशी, वो 3 माह की मेरी जिंदगी में ऐसी खामोशी थी जिसमें ना मुझे कोई किसी से सरोकार था, ना मुझे किसी की कोई फिक्र थी, ना मुझे कोई अपनी परवाह थी, मैं बिल्कुल खामोश हो गई।
0: दुआ करता हूँ कि ऐसा कोई लम्हा दोबारा ना आए, आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे।
2: जिंदा लाश हूँ, मर चुकी हूँ मैं। थैंक यू सो मच आपकी,
0: थैंक यू वेरी मच। अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासात को शेयर करने का बहुत शुक्रिया। दोबारा ऐसी कोई भी चीज अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ना लेकर आए।
2: थैंक यू, अल्लाह ताला ने ही कुछ ऐसा किया कि मैं वापस आना शुरू हुई और फिर आपकी।
0: बहुत शुक्रिया अनिला, थैंक यू वेरी मच।
2: मेरी जिंदगी में और मैं नहीं जानती इसकी वजह क्या थी, अंदर क्या था मेरे दिन में। I don't remember. पर खूबसूरत टॉपिक है और बहुत सी चीजें जानने का मौका मिल रहा है। और अभी साजिद डार आए थे, बड़ी देर बाद आए हैं, वेलकम साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। और आप सब सुनने वालों के लिए बहुत सी दुआएं और आपके लिए भी रहमान,
0: बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। बोलने पर मजबूर कर देता है ये टॉपिक, अपने अंदर की एहसास को अल्फाज देने का मन करने लगता है इस टॉपिक को, इस बात को सुनने के बाद कि आखिर इंसान अचानक से खामोश क्यों हो जाता है, क्या वजह होती है उसकी खामोशी की, क्यों एकदम से वो सब कुछ कहना छोड़ देता है, बहस करना, लड़ाई करना, सब कुछ छोड़ देता है, किसी ताल्लुक को बचाने की कोशिश भी नहीं करता, वो सिर्फ खामोश हो जाता है। बाज़ुकात ये जो खामोशी होती है ये कोई कमजोरी नहीं होती, कोई आपके अंदर का कोई छुपा हुआ हिस्सा नहीं होता, ये दरअसल शोर से इनकार होता है। बहरहाल टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
0: जी कौन बात?
3: भाई क्या हाल है? ठीक ठाक।
0: अल्लाह का बड़ा ही करम, बड़ा एहसान है जी। कौन बात कर रहे हैं? जी तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे?
3: سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو بہت ڈھیر ساری دعائیں اور سلام.
0: وعلیکم السلام.
3: ماشاء اللہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے. اس ٹاپک میں جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کو سیکھ مل رہی ہے.
0: اچھا
3: ٹھیک ہے جی,
0: چلو
3: اس میں میں بھی شامل ہوں.
0: ٹھیک ہے مان لیتے ہیں.
3: ہاں یہ خاموشی جو ہے نا یہ انسان ایسے نہیں لے آتا, یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اچانک سے آتی ہے, اچانک سے پھر جاتی ہے.
0: نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اچانک سے نہیں آتی ہے. آپ کی آواز جو ہے وہ کافی زیادہ پرابلم کر رہی ہے, ڈسٹورشن کافی زیادہ ہے بیچ میں نا, شور بہت زیادہ,
3: ہوا بہت تیز آ رہی ہے.
0: کہاں پہ ہیں آپ؟
3: میں وپتا ٹاؤن میں ہوں.
0: نہیں آپ اپنی چھت پہ ہیں, گھر پہ ہیں, باہر ہیں؟
3: میں ڈیوٹی پہ ہوں, گلی میں بیٹھا ہوں.
0: اچھا اچھا گلی میں, ٹھیک ہے جی. اب بتائیں کیا کہنا چاہیں گے.
3: لیکن جو نا اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو ہے نا خاموشی آتی کیوں ہے, اس میں جو ہے نا وہ انسانیت جو دوسرے جس لوگوں پہ وہ ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں, جس کو خاموش کر رہے ہوتے ہیں, وہ انسانیت ان لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے.
0: کن لوگوں میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے؟
3: جی کہ جس بندے کو ٹارچر کر رہے ہیں, باتوں باتوں میں ٹارچر کر رہے ہیں.
0: اچھا
3: باتوں باتوں میں اس کو سنائی جا رہے ہیں,
0: یہ
3: آگے سے آگے والا بندہ جواب نہیں دے رہا, خاموش ہو گیا ہے یا خاموش ہو رہا ہے, تو آگے والے جو کر رہے ہیں, جاتی کر رہے ہیں, وہ ان میں انسانیت ختم ہوتی ہے.
0: یعنی ان کی انسانیت ختم ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں.
3: وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں بالکل.
0: اچھا
3: میں آج ہی جو ہے نا موبائل استعمال کر رہا تھا ٹک ٹاک پہ, اس پہ ایک ویڈیو ہوئی بزرگ کی.
0: اچھا
3: ٹھیک ہے, اور بزرگ کی دو تین منٹ کی ویڈیو تھی, وہ بتا رہا تھا کہ میں آٹو رکشا چلاتا ہوں اور میرے ساتھ ایک پیسنجر بیٹھا ہے اور ساتھ اس کے دو بچے تھے, لیڈیز تھی ساتھ, ماں تھی اور ان کے دو بچے تھے, ایک بیٹی ایک بیٹا 15 سال کا. تو وہ کہنے لگی کہ بابا جی میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں. کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا جی کیا میں آپ کے پاس یا کسی کے گھر میں 6 سال نوکری کرتی ہوں, کام کرتی ہوں, برتن دھونا, صفائی کرنا, کھانا بنانا, جو کچھ بھی وہ کہہ رہے 6 سال ملازمت کرو, اور اس کے عوض آپ کو جو ہے وہ 6 سال کے بدلے آپ کے بچے کو موٹر سائیکل لے کے دے دوں میں, کہ کیا یہ صحیح ہے یا احسان ہے یا کیا ہے یہ چیز؟ تو بابا جی جواب دے رہے ہیں کہ یہ احسان نہیں ہے, اگر میرے پاس آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو نا, سفر کر رہے ہو, آپ نے مجھے کرایہ دینا, نہ میرا احسان ہے نہ آپ کا احسان ہے. ٹھیک ہے, اگر احسان وہ ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ کیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے دوسرے پہ, لیکن وہ بھی اس کو جتلائے نا.
0: ہاں
3: ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جی بیٹا بات کیا, بات کیا کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا جی میں
0: یہاں تو اپنے کام کی اجرت دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ دے رہا ہوں میں.
3: جی دے رہا ہوں میں. تو بیٹا آپ بات کیا کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ بابا جی پوچھ رہے ہیں. اور کہا جی میں جو ہے نا یہ میرے رشتے دار ہیں جدھر سے میں بیٹھ کے آ رہی ہوں آپ کے ساتھ, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ضد کر رہا ہے موٹر سائیکل لینے کا. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے بات کی ہے, تو انہوں نے کہا جی 6 سال میرے گھر میں ملازمت کرو, تو پھر اس کے بعد 6 سال کے بدلے میں آپ کو موٹر سائیکل لینا پھر بیٹے کو لے کے دے دوں گا. بابا جی نے پوچھا یہ رشتے دار آپ کے لگتے کیا ہیں, کون سے رشتے دار ہیں, ماموں ہیں, چاچو ہیں, کون ہیں؟ اس نے کہا جی میرا سکا بھائی ہے. سکا بھائی میرا ساتھ رو رہی ہے, ساتھ بات کر رہی ہے.
0: ٹھیک ہے,
3: تو یہ انسانیت ہے. آج
0: اس کے بعد انسان کے آگے خاموشی آ جاتی ہے, بس
3: خاموشی آ جاتی ہے.
0: تھینک یو ویری مچ تنویر صاحب, سلامت رہیں.
3: بہت بہت ساری دعائیں. اوکے,
0: اللہ حافظ. اللہ حافظ. 12:58, ایک اور کال, اس کے بعد کچھ باتیں کریں گے اپنی باتیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی.
0: ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو.
4: تھینک یو سو مچ رحمان بھائی, آپ خیریت پہ ہیں؟
0: اللہ کا بہت کرم, بہت احسان.
4: چلے الحمدللہ.
0: جی ڈاکٹر صاحب,
4: ایک لفظ ہے کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے.
0: واہ.
4: اور اب اگر صرف زبان کے چلنے کو رکنے کا نام اگر خاموشی کہہ دے تو میرے خیال میں یہ خاموشی کی تعریف کے ساتھ زیادتی ہوگی.
0: زیادتی ہوگی, بالکل صحیح کہا آپ نے.
4: ہوتا کیا ہے کہ اب جب وہ اب انسانوں کی کیٹیگریز ہیں, अब ये वो कैटेगरीज है जो मैंने नहीं लगाई, जो मेरे और आपके पैदा करने वाला है उसने कैटेगरीज लगाई है। उसने कहा जो अपने दिल अब सॉरी जो अपने दिमाग का ठीक इस्तेमाल नहीं करते उनकी मिसाल तो कीड़े मकोड़ों की मानद है।
0: बिल्कुल ठीक,
4: कीड़े मकोड़े भी एक मुकाम पे आप देखेंगे कि चूंटी आपको खामोश सिर्फ उसकी हरकत नजर आएगी, आप उसकी बोली नहीं पहचान सकते जब तक आप आवाजों की मुर्शिद के साथ जाके आपका ताल्लुक नहीं बनता।
0: बहुत खूबसूरत।
4: तो उसमें जानवर भी दूसरी कैटेगरी है, ये बहुत बड़ी तादाद होती है जो पेट के बल रिंगने वाले जानदार होते हैं, या वो इंसान नुमा लोग जो कि पेट के लिए सिर्फ जिंदा होते हैं कि मैंने खाना कमा के लाना है, बच्चों को खिलाना है, बस ये। दूसरे हैं जानवर जिनकी कोई मंजिल नहीं होती, वो भी जानवर भी आपने देखा होगा खामोश होते हैं, बैल खामोश है, गाय खामोश है। तो खामोशी सिर्फ मुंह बंद कर लेने का नाम खामोशी नहीं है, वो खामोशी के जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजा कहता है। हजरत मरियम से बात हुई तो कहा कि मरियम कोई आए खाओ पियो यहाँ पर, और कोई दूसरे को कि मैंने अल्लाह के लिए रोजा रखा हुआ है, और रोजा चुप का रोजा। जो खामोशी आपका तज़किया नहीं करती, जो खामोशी आपकी इंसानियत को परवान नहीं चढ़ाती, जो खामोशी आपको अपने पैदा करने वाले की सिफात के साथ और उसकी ज़ात के साथ और उसकी ज़ात फिर आपको कायनात के साथ नहीं जोड़ती, तो समझ लें कि आपने किसी गुस्से में आके अपने आप को चुप किया हुआ है। चुप में और खामोशी में बड़ा फर्क है।
0: बहुत खूबसूरत।
4: अगर तो कोई बंदा चुप हो जाए इसलिए जी कि मेरी इज्जत नहीं है, इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए, बंदे बेचारी की क्या इज्जत है, कोई भी इज्जत नहीं, इज्जत सारी की सारी अल्लाह के वास्ते। अगर तो बंदा चुप कर गया किसी की ज्यादती की वजह से, तो वो किसी की ज्यादती नहीं होती, उसने खुद को पहचाना नहीं होता, तो जुल्म की एक इंतहा पे जाके इंसान चुप कर जाता है, जहां वो कहते जी मैं बेबस हो गया। इंसान हो और बेबस हो जाए, ये दो बातें हो नहीं सकती। इंसान और बेबस ऐसे ही है जैसे आप एक लफ्ज बोला जाता है पाकिस्तान में तोहीन रसालत, रसालत के साथ ये लफ्ज आ ही नहीं सकता। तो इसी तरह खामोशी के साथ वो वाली बेबसी नहीं आ सकती, यहाँ चुप के साथ आएगी, जहां पर इंसान ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, अपने आसाब को सही इस्तेमाल नहीं किया, चुप करके बैठे लोथड़े की तरह देखते रहे और एक मुकाम आता है वो जालमों की बात है। और जालमों की जो बात है वो चुप अगर तोड़ेंगे भी तो वो जुमले अदा करेंगे। जुमले में और कलमे में उतना ही फर्क है जितना धुएं में और बादल में फर्क होता है। बादल पानी बरसाएगा, धुआं आपका सिर्फ धुआं ही होता है,
0: धुआं होता है।
4: तो इसी तरह जुमलों के जो लोग होते हैं जिनके पास सिर्फ जुमले होते हैं, अम्मी ने ज्यादती कर दी, भाई ने, जो इंसानों को ज्यादतियों से देख रहे होते हैं, हालात से, वाकयात से, इंसानों के रवैयों से, अगर आप खामोशी चुप साध लेते हैं तो वो खामोशी नहीं होती, वो आप अपना बेबसी का एक इजहार करते हैं, अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जिसके लिए फिर साइकेट्रिस्ट ऐसे लोगों को ट्रीट करते हैं। बट आपका जो उनवान है वो है खामोशी, जैसे मैं खामोश है मगर वो खामोश नहीं भी है, ठीक है, बात करता है मगर पर्दे के पीछे से, उसकी आवाज तो आती है। आवाज सुनने वाले दिल वो होंगे जो जिन्होंने तन्हाई को अपना उस्ताद बनाया होगा, क्योंकि तन्हाई से बड़ा उस्ताद कोई
0: नहीं। बिल्कुल ऐसे ही।
4: तो तन्हाई में जिसने रब नाम नहीं है, मैं कल किसी को किसी रेडियो पे सुन रहा था तो एक खातून उस रब का जिक्र करती बेचारी जिसका रब का उसको तारुफ भी नहीं था, उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स का नाम रब रखा हुआ था और वही चीजें बयान कर रही थी जबकि रब हुक्मों के साथ है। तो हमारे यहाँ जब लोगों को अल्लाह का तारुफ नहीं होगा, कुरान से वो मुंसलिक नहीं होंगे, अपनी जात को उसके साथ खुद कुरान में से नहीं ढूंढेंगे कि मैं किधर हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, तुम क्यों नहीं गौर करते। जो गौर करेंगे वो फिर खामोश तो होंगे मगर वो उस वक्त बोलेंगे कि उनको पता होगा कि जाहिल को दूर से सलाम करना है, किस को लुगवियात को बच के गुजरना है, कहाँ पर बोलना है, कितना बोलना है, किसकी तरफ मुंह करके बोलना और क्या नहीं बोलना, ये इल्म की डेफिनेशन है।
0: बहुत
4: तो खामोशी में अगर आपको इल्म मिलता है, क्योंकि तालीम तो बाहर से मिलती है, इल्म अंदर से मिलता है।
0: जी हाँ, इल्म मालूमात और इल्म में फर्क है।
4: जी बेशक ऐसे ही मालूमात तो बाहर से आ रही हैं, आपके कानों से टकरा रही हैं, आंखों से टकरा रही हैं, वो मालूमात दे रही हैं। जो आपके अंदर से एक चीज आ रही है वो उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप, वो कहते हैं ना पांडा खाली करो अपना, पांडा खाली करता जिस वक्त इंसान अपनी नफूस को कंट्रोल करना जान जाता है, वो अपनी जुबान को लगाम डालना सीख लेता है, हवाएं जा ताबे हो जाती हैं कि आपने क्या बोलना है, कितना बोलना और कौन सा लफ्ज बोलना है और कौन सा जुमला और कौन सा कलमा अदा करना है। تو یہ جس کو تمیز آ جائے گی اس کو خاموشی اس کی میں کہوں گا وہ آوازوں کی مرشد کا پھر وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں چپ ہونا ہے اور کہاں خاموش ہونا ہے. زیادہ ٹائم لے لیا شاید.
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ,
4: جزاک اللہ وقت دینے کا شکریہ.
0: سلامت رہیں, اللہ حافظ. اللہ حافظ.

बात सच्ची है, जितना इंसान जानने लगता है उतना उसे अपनी लाइल्मी का एहसास होने लगता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मालूमात जो होती हैं इंसान में ज़्यादा शोर पैदा कर देती हैं। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर 2-3 किलो जो किताबें होती हैं उनकी मालूमात को अपने इल्म के नज़रिए से बता रहा होता है। गहरा इंसान बाज़ औक़ात जितना जान जाता है उतना लाइल्मी का एहसास उसे खाने लगता है, खामोश हो जाता है। जब इंसान को ये पता चलने लगता है कि ये जो दुनिया है ये उसकी मर्जी की जगह नहीं है, हर बात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, हमेशा उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, ऐसी सूरत हाल में वो फिर बदलने की कोशिश नहीं करता दूसरों को, बल्कि अपने रद्दे अमल को बदलने लगता है। यस, एक ट्रैक शामिल करते हैं। गला जो है वो पिछले 3 घंटे से बोलने की वजह से थोड़ा सा खराब होने वाला है, हो रहा है। अच्छा लगता है जब लोग अपने मन की गहराइयों से ऐसा साथ के मोती निकाल लाते हैं। वो जो बराह रास्त आपके दिल के ऊपर, आपके मन के ऊपर इल्हाम की सूरत में इल्म अता करता है, हमेशा खुशी होती है जब लोग ऐसे एहसासात को बेहतरीन अल्फाज के साथ बयान करते हैं।

1:14 हो चुके हैं, ये प्रोग्राम है अधूरी बातें। 10 बजे से अभी तक मैं आपके साथ हूं। मजीद ये कि अगले 5 मिनट के बाद मैं ये प्रोग्राम खत्म करने वाला हूं। गला जो है वो मैं चाह रहा हूं कि कल मुझे बहाना ना मिले कि मैं फिर से छुट्टी करूं। कल मुझे दोबारा 10 से लेकर 2 बजे तक 4 घंटे का प्रोग्राम करना, जिसमें 2 घंटे पहले आरजे डॉक्स वाला प्रोग्राम है, नाइट थेरेपी, उसको मिक्स करेंगे अधूरी बातों के साथ आज की तरह, लेकिन कल डिफरेंट टॉपिक के साथ डिफरेंट अंदाज में आएंगे। और फिर 12 से लेकर 2 बजे तक आपके लिए एक सरप्राइज है, एक सिंगर है जो बुल्ले शाह की धरती से मेरे पास आएंगे, कसूर से मेरे पास तशरीफ लाएंगे, और फिर हम उनके गीत सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे। 12 साल खामोशी की बातें हम कर रहे थे। बहुत से लोगों ने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, अपने ऊपर बीते हुए एहसासात, जज्बात, तजुर्बात, मुशाहिदात बयान किए। उन सब का बेहद शुक्रिया। ये वही चीज है जो अपने तख्लीकार से मिलवाती है, ये खामोशी। यकीन करें, यही वो चीज है जो अपने आप से मिलवाती है। जैसे ही इंसान अपनी जात की हकीकत को समझता है, जान लेता है, उसे ये पता चलता है कि हाँ अच्छा, तो ये है पूरी कायनात, जिसको मैं बाहर मुख्तलिफ तरह के लिबादों में तलाश करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा ये है, इसको मैं कहां कहां ढूंढ रहा था, यही है ना। बाज़ोकात ये उसकी पुख्तगी की तरफ इशारा होती है, ये जो खामोशी होती है, उसका शऊर, उसकी अंदरूनी सफर की नौयत। और फिर खुद को तोड़ने के बाद उसके होने के एहसास को पाना, जैसे मौला अली कहते हैं ना, अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इस तरह की बातें जो किसी बड़ी हस्ती से मंसूब हों मैंने कोट करना बंद कर दी। ढके छुपे लफ्जों में बातें कर देता हूं, जो पढ़ी हैं वो अच्छा लगता है, उससे जरा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर फील होने लगा। इस तरह से गलती से किसी की बात ना हो और मैं कोट कर दूं उसके नाम से तो बुरा लगता है, लेकिन ये बात बड़ी सच्ची है, ये मौला एक कायनात ही कह सकते हैं। मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना है, तो जब इरादे टूटते हैं, उम्मीदें जब मांद पड़ जाती हैं, ख्यालात जब बिल्कुल बंद हो जाते हैं, सफाहस्ती से बहुत सारी चीजें जब बिल्कुल समझ से बालातर हो जाती हैं, जब कोई और रास्ता नजर नहीं आता, तब पहचानता है, जब वो उस मुश्किल से निकालता है ना, बिल्कुल बहुत आसानी के साथ, इंसान ने गुमान भी नहीं किया होता कि मैं क्या यहां से बचकर निकल जाऊंगा, इस मुश्किल से, इस अजियत से, इस जिल्लत से क्या मैं निकल जाऊंगा, वो जब इतनी आसानी से निकाल देता है, तब उसके होने का एहसास मुकम्मल हो जाता है, तब फिर उसको पहचान लेता है। खामोशी बड़ी बड़ी मजबूत और बड़ी बहुत बड़ी शय है। ये टॉपिक रखने का मकसद आम बातों की तरफ इशारा करते हुए खास बातों की जानिब जाना भी है। बहरहाल इंसान जितना हकीकत को समझता है, यकीन करें, जितना जान लेता है, उतना वो ज्यादा खामोश हो जाता है, वो ऐलान नहीं करता इसके बाद। मौजूद में खुश रहता है,
लम्हाए मौजूद में खुश रहना सीख लेता है। वो उसकी तमाम हकीकतों को आहिस्ता आहिस्ता उसकी इजाजत के बाद समझ लेता है। बिल्कुल मत समझा करेंगे अगर कोई आपकी अहानत कर रहा है, आपको मलामत कर रहा है, आपको आपकी तजलील कर रहा है, तो यहां से सफर खत्म हो जाएगा। दरअसल सफर का आगाज यहां से। हर मैं ये समझता हूं हर नए शऊर का आगाज एक खास तरह की अलामत से होता है। जब वो टूटता है, जब वो अपनी बर्दाश्त से ज्यादा यानी कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा जब उसके ऊपर वजन पड़ता है तब उसको अता किया जाता है। इस समय तक रहमान अनवर आपके साथ रहा। 1:20 यहां से इजाजत लेने का समय हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और यकीन करें अपने अंदर के इस सोचों के हुजूम को सुनने की कोशिश कीजिएगा, ख्यालात के हुजूम को सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और खास तौर पे उन लोगों की खामोशी को भी समझने की कोशिश कीजिएगा जो शायद लफ्जों से ज्यादा एहसासात में जिंदा होते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:00। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो तफले मकतब समझ कर ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। ये मुझे सुनने का बहुत दिल चाह रहा था, इस पे ही इख्तिताम करूंगा मैं। ये मेरा दिल चाह रहा है, यकीन करें। अगर किसी को बुरा लगता है तो कोई मसला नहीं। 1:22 रहमान अनवर का साथ कैसा लगा आपको? मैं आपसे माजरा चाहता हूं एक बात की, यकीन करें मुझे पता है कि आप नाराज होंगे, लेकिन आप मुझे माफ कर देंगे जब ये बात मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो फेसबुक के ऊपर 19 से जायद मुझे फेसबुक पेज के ऊपर जो लाइक्स मिले हैं, 54 से जायद जो कमेंट्स मेरे पास आए हैं, मैंने उनमें से कोई रीड नहीं किया। इस एक पोस्ट के ऊपर 33 कमेंट हैं, 15 लाइक्स हैं, और चैनल पाकिस्तान का जो चैनल है वो मैंने अभी तक इस्लामाबाद वाला चैनल वो अभी ओपन नहीं किया था, जहाँ पे डॉक्स की पोस्ट लगी होती है वहाँ के भी कॉमेंट्स मैंने शामिल कर रहे थे। यहाँ तक कि 4-4-7-1 के पैगाम भी शामिल नहीं कर पाया मैं। अब्दुल नूर हाशमी ने बहाउद्दीन से मुझे बहुत बहाउद्दीन ने मुझे मैसेज किया, निमल ने मैसेज किया, मिराल ने मैसेज किया, मेहर ने मैसेज किया, सलमा DHA लाहौर से मैडम आपने भी मैसेज किया। डॉक्स बिल्कुल ठीक हैं, इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीक में उनसे मुलाकात होगी। एक पॉडकास्ट हमारा, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, वो भी जल्द आप तक पहुंचेगी। मैं कल आपको बहुत सारी बातें भी बताऊंगा, लेकिन अभी इजाजत लेने का समय हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ये सारे मैसेजेस कल पढ़ूंगा और कल के जो मैसेजेस है वो भी पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे पास 4 घंटे होंगे जिनमें हम बहुत सी बातें करेंगे। रहमान अनवर इज साइनिंग आउट। मैं जमी से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। अल्लाह हामी नासर।

से वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ लूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: This is FM 101.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
2: I love FM 101.
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.
2: You're listening to FM 101, a bale bale or shower shower.
4: There's music, and then there's magic. One above FM 101.
5: Smile and dial 111-111 FM.
6: Tune in to One Above FM 101.

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: This is FM 101.
2: Suror Sangeet. Sazo Awaaz. Aapka manpasand radio channel FM 101.
3: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
3: शुक्रिया।

वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे। वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे। शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे। शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ न याद आया। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ न याद आया। अभी अभी तो हम एक दूसरे से बिछड़े थे। अभी अभी तुम्हें सोचा तो कुछ न याद आया। अभी अभी तो हम एक दूसरे से बिछड़े थे। तुम्हारे बाद चुमन पर जब एक नजर डाली, तुम्हारे बाद चुमन पर जब एक नजर डाली, कली कली में खिजां के चिराग जलते थे। तुम्हारे बाद चुमन पर जब एक नजर डाली, तुम्हारे बाद चुमन पर जब एक नजर डाली, कली कली में खिजां के चिराग जलते थे। तमाम उम्र वफा के गुनाहगार रहे। तमाम उम्र वफा के गुनाहगार रहे। ये और बात कि हम आदमी तो अच्छे थे। शबे खामोश को तन्हाई ने जुबां दे दी। शबे खामोश को तन्हाई ने जुबां दे दी। पहाड़ गूंजते थे, दश्त सनसनाते थे। शबे खामोश को तन्हाई ने जुबां दे दी। पहाड़ गूंजते थे, दश्त सनसनाते थे। वो एक बार मेरे जिनको था हयात से प्यार, जो जिंदगी से गुरेजा थे, रोज मरते थे। नए ख्याल अब आते हैं ढल के आहन में। नए ख्याल अब आते हैं ढल के आहन में। हमारे दिल में कभी खेत लहलहाते थे। ये इर्तका का चलन है कि हर जमाने में। ये इर्तका का चलन है कि हर जमाने में पुराने लोग नए आदमी से डरते थे। नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी। नदीम जो भी मुलाकात थी अधूरी थी। कि एक चेहरे के पीछे हजार चेहरे थे। कि एक चेहरे के पीछे हजार चेहरे थे। वो कोई और न था, चंद खुश्क पत्ते थे। शजर से टूट के जो फसले गुल पे रोए थे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, प्रोग्राम गुंचे शौक के साथ मैं आपका अपना मेज़बान वसीम अहमद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। दिल की गहराइयों से कबूल कीजिए, मेरे दिल की गहराइयों से आपको सलाम पहुँचे। आदाब अर्ज है, कहिए साहब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और अगर इस वक्त जाग रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मैं वेलकम कहूँगा, खुश आमदीद कहूँगा कि आप अपनी खूबसूरत नींद को छोड़ के इस वक्त आप मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए अपने रेडियो सेट के पास मौजूद हैं। आज के दिन इसी वक्त यानी रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, सुबह के 4 बजे तक हमारा आपका साथ होता है। सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत शायरी और खूबसूरत मौसीकी के साथ, उसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत बातचीत भी करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं जिसके ऊपर हम बातचीत कर सकें। ऐसा टॉपिक प्रोग्राम में लेके आते हैं जिस पे आप भी खुल के बात कर सके, हम भी कर सके और हो सके। तो वो बात किसी के काम आ सके,
और अगर किसी के काम हमारी कोई बात आ गई तो समझ लीजिए कि प्रोग्राम करने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिल गया, फल मिल गया। प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है 101 एफएम के लाहौर स्टेशन से। इंटरनेशनल प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं आज के दिन, और नेटवर्क के ऊपर ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है, यानी 101 एफएम के नेटवर्क के ऊपर जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ भी 101 एफएम के स्टेशंस हैं, वहाँ वहाँ पे सब लोग हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं। उसके साथ साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग पे भी हमारे प्रोग्राम को एंजॉय कर सकते हैं और कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में हमारा शो इस वक्त सुना जा रहा है। आप हमारी लाइव ट्रांसमिशन को, लाइव स्ट्रीमिंग को सुनने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पे रेडियो पाकिस्तान का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसी तरह से आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जिसका पता है www.radio.gov.pk पे जाके भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंजा शौक, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, यानी आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहूँगा। प्रोग्राम में आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को करते हैं। जब आपको कोई याद करता है, कोई आपको मैसेज करता है, कोई आपको ख़त लिखता है, कोई तोहफा देता है, तो आप उससे बहुत खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप भी हमारे प्रोग्राम में अपने कॉमेंट्स ज़रूर भिजवाएँ, जिसके लिए हमारा पता है फेसबुक का www.facebook.com/fm101lahore। SMS के लिए आप लिखेंगे 101, स्पेस देंगे, अपना नाम, पैगाम, अपने ही पसंद का शेर, अपनी कोई खूबसूरत बात, कोई फरमाइश लिख के आप भिजवा सकते हैं 4471 पे, यानी 4471 पे। इसी तरह से हमारा टेलीफोन नंबर है 0042-111-0101, यानी 111-00-101। पाकिस्तान से बाहर से अगर आप कॉल करेंगे तो 0092 पाकिस्तान का कोड और लाहौर का कोड 42 मिलाइएगा, देन 111-00-101 को मिला के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपके कमेंट्स, आपके जो मैसेजेस होते हैं वो प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह, आपकी खूबसूरत नींद में भरी हुई आंखों की तरह। वैसे तो इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है और कई दफ़ा गलतियों का खमियाजा सारी उम्र भुगतता है, मगर जो हम सोचते हैं कि हमने ये गलती की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा दिल जो है वो नहीं मानता कि हमने कोई ऐसी गलती की है, जिसको हमारा दिमाग कह रहा होता है कि वो आपने गलती की है। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हम गलत लोगों पर यकीन कर लेते हैं, हमारा दिल ये कहता है कि नहीं, हमने गलत लोगों पे यकीन नहीं किया, मगर दिमाग कहता है कि आपने गलत लोगों पे यकीन किया है। क्योंकि दिमाग जो बात कहता है वो सोच के समझ के कहता है, और दिल ये कहता है कि हम गलत लोगों पे हमने यकीन नहीं किया, मगर जो हकीकत है वो जिंदगी ये कहती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये नहीं कि हम गलत लोगों पर यकीन कर लेते हैं, बल्कि ये है कि हम उन्हें बार बार मौका देते हैं। एक दफ़ा किसी ने हमारे दिल को तोड़ा, एक दफ़ा हमने गलती की, एतमाद किया, एतबार किया, भरोसा किया, उन्होंने हमारे भरोसे को, हमारे एतमाद को, हमारे यकीन को चिकनाचूर कर दिया। इसके बावजूद हम उन्हें बार बार मौका देने के लिए तैयार होते हैं, बार बार मौका देते हैं। और ऐसे में कुछ लोग जो होते हैं वो माफ़ी के काबिल होते हैं, उनको माफ़ किया जा सकता है, मगर क्या आप दोबारा उन पे एतमाद करेंगे? क्या आप दोबारा एतमाद कर सकते हैं उनके ऊपर, जिनको आपने माफ किया हो उनकी गलतियों के ऊपर? कहते हैं कि आप जब माफ करते हैं तो आपका दिल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही नर्म दिल लोग होते हैं जो लोगों को माफ कर देते हैं। अगर आपका दिल नर्म है,
اور آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے دل کے اندر دوسرے کے لیے ہمدردی پیار ابھی بھی موجود ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. مگر یہ جذبہ, یہ خوبصورت احساسات ہر کسی کے لیے نہیں ہونے چاہیے. آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جڑ سکتا ہے, دوبارہ بحال ہو سکتا ہے, یا ایک بار ٹوٹ جائے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس شخص کے اوپر دوبارہ اعتماد کرنا چاہیے جس نے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہو؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ پروگرام میں ضرور اس کے حوالے سے بات کیجیے گا. آپ اپنے پیغامات ہمیں بھجوائیے گا جس میں اس حوالے سے ضرور بات کیجیے گا کہ کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے, ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ سے جوڑا جا سکتا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں گا کہ چونکہ یہ پروگرام خالصتاً شاعری کے اوپر کیا جاتا ہے اور آپ کی جو پوئٹری ہے, جو آپ کی شاعری ہے, ہم اس کی بہت امید کرتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچے گی. اور بہت اعلیٰ معیاری جو آپ کی اپنی ذاتی پوئٹری ہوگی, شاعری ہوگی, وہ بھی آپ بھجوا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو بہترین کلیکشن ہے اسے بھی آپ ہمارے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی خوبصورت شاعری ہم تک پہنچے گی, ہم اسے اپنے پروگرام کا حصہ بناتے چلے جائیں گے اور پروگرام کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے چلے جائیں گے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک اور خوبصورت کلام. کہیں بے کنار سے رچ گئے, کہیں زر نگار سے خواب دے. کہیں بے کنار سے رچ گئے, کہیں زر نگار سے خواب دے. تیرا کیا اصول ہے زندگی, مجھے کون اس کا جواب دے. جو بچا سکوں تیرے واسطے, جو سجا سکیں تیرے راستے. جو بچھا سکوں تیرے واسطے, جو سجا سکیں تیرے راستے. میری دسترست میں ستارے رکھ, میری مٹھیوں کو گلاب دے. یہ جو خواہشوں کا پرند ہے, اسے موسموں سے غرض نہیں. یہ جو خواہشوں کا پرند ہے, اسے موسموں سے غرض نہیں. یہ اڑے گا اپنی ہی موج میں, اسے آب دے کے نہ سراب دے. تجھے چھو لیا تو بھڑک اٹھے میرے جسم و جام میں چراغ سے. تجھے چھو لیا تو بھڑک اٹھے میرے جسم و جام میں چراغ سے. اسی آگ میں مجھے راکھ کر, اسی شولگی کو شہاب دے. کبھی یوں بھی ہو تیرے روبرو میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں. کبھی یوں بھی ہو تیرے روبرو میں نظر ملا کے یہ کہہ سکوں. میری حسرتوں کو شمار کر, میری خواہشوں کا حساب دے. تیری ایک نگاہ کے فیض سے میری کشت حرف چمک اٹھے. میرا لفظ لفظ ہو کے کشام, مجھے ایک ایسی کتاب دے. میرا لفظ لفظ ہو کے کشام, مجھے ایک ایسی کتاب دے. کہیں بے کنار سے رچ گئے, کہیں زر نگار سے خواب دے. تیرا کیا اصول ہے زندگی, مجھے کون اس کا جواب دے. مطلب سامعین, آپ کے خوبصورت پیغامات, آپ کے کمنٹس ہم تک پہنچ رہے ہیں, ہم انہیں بھی پروگرام میں شامل کرتے چلے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے آف ایئر کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے. اگر آپ ہمارے پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں, آف ایئر کال کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمارا ٹیلی فون نمبر 0421-111-0101 یعنی 111-000-101.
आंख ने रात जब एक चांद मुकम्मल देखा, आंख ने रात जब एक चांद मुकम्मल देखा, फिर समंदर को भी होते हुए पागल देखा। आंख ने रात जब एक चांद मुकम्मल देखा, फिर समंदर को भी होते हुए पागल देखा। रात फिर देर तलक की तेरी बातें खुद से, रात फिर देर तलक की तेरी बातें खुद से। रात भर सामने चेहरा तेरा पल पल देखा। आज यादों की गटार टूट के बरसी दिल पर, आज हमने भी बरसता हुआ बादल देखा। आज यादों की गटार टूट के बरसी दिल पर, आज हमने भी बरसता हुआ बादल देखा।

0: This is FM 101.
1: सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया. सरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया. सुरोर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101.

ये जो वहशत खुमार लम्हे हैं, ये जो वहशत खुमार लम्हे हैं, या जो आंखों पे गहरे हल्के हैं, या जो टूटे हैं तार बातों के, या वो रिश्ते हैं सिर्फ यादों के, ये सितम है या मेहरबानी है, ये सितम है या मेहरबानी है, ये तेरे बाद की कहानी है। वर्मन एफएम पाकिस्तान, आपका अपना फैमिली स्टेशन। आवाज आपकी समातों तक पहुंच रही है, आपके अपने मेजबान वसीम अहमद की। कुछ और फिर कॉल्स हम तक पहुंची हैं। असद अली हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं डीएचए लाहौर से, और कह रहे हैं कि जी मैंने कहा जी आप मेरे प्रोग्राम में आइएगा, तो इन्होंने कहा जी कि मैं लाइव कॉल्स में आऊँगा इंशाल्लाह, और आके आपको शेर भी सुनाऊँगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी, क्योंकि ये शायरी पे बेस करते हैं प्रोग्राम, आपकी शायरी इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। इसी तरह से हमारी बहुत अच्छी कॉलर हैं, बहुत अच्छी लिस्टनर हैं, कॉलर तो कम है, मैसेजेज इनके आ जाते हैं और फिर कॉल्स इनकी आती हैं। सीमा जी इसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। इसी तरह से हमारी बहुत अच्छी कॉलर हैं, बहुत अच्छी लिस्टनर हैं, कॉलर तो कम है, मैसेज

सीमा जी कह रही थी कि मुश्किल ही है कि मैं लाइव कॉलिंग सेशन में आ सकूं। इसी तरह से फौजिया हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, इन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया है और प्रोग्राम की तारीफ की है। फेसबुक के ऊपर आपकी कुछ कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं, उन्हें हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। प्रोग्राम को लाइक किया है जनाब केयर ने और किंग फजल खान काकड़ साहब ने, जुगनू जूनियर ने और महाजुमी साहिबा ने। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ और देखते हैं कि किन्होंने हमें अपने पैगाम भेजे हैं। महाजुमी कहती है कि अस्सलाम वालेकुम। वसीम कहती हैं गुजरे हुए तवील ज़माने के बाद भी, गुजरे हुए तवील जमाने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी। वाह क्या बात, गुजरे हुए तवील जमाने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी, पहलू में रह के दिल ने दिया है बहुत फरेब, पहलू में रह के दिल ने दिया है बहुत फरेब, रखा है उसको याद भुलाने के बाद भी। बहुत खूब, बहुत बढ़िया माजुबी, बहुत शुक्रिया। आपकी पोइट्री हमेशा प्रोग्राम को खूबसूरत बनाती है। जुगनू जूनियर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और सत बिस्मिल्लाह जी आया नू, बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह से जुगनू जूनियर छा गए हैं और इन्होंने बहुत खूबसूरत सी पोइट्री भी हमें बहुत सारी पोइट्री भी हम तक भेजी है, बहुत सारी तारीफें भी की हैं। जुगनू जूनियर आप जीते रहिए, आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं, प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, फूल भी भेजे हैं और बहुत सारी दुआएं भी आपकी तरफ से हम तक पहुंची हैं। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शामिल होने के लिए। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं जनाब माजबी, कह रही हैं कि वो माफ़ कीजिएगा, जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतज़ार कहाँ रहा, जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतज़ार कहाँ रहा, ये सुकून का दौर शदीद है कोई बेकरार कहाँ रहा, जो दुआ को हाथ उठाए भी तो मुराद याद ना सकी, जो दुआ को हाथ उठाए भी तो मुराद याद ना आ सकी, किसी कारवां का जो जिक्र था वो पसे गुबार कहाँ रहा। ये तुलुए रोज़े मलाल है सो गिला भी किससे करेंगे हम, कोई दिल रहा कोई दिल शिकन कोई दिल फगार कहाँ रहा, कोई बात खां वो ख्याल की जो करो तो वक्त कटेगा अब, हमें मौसमों के मिजाज पर कोई एतबार कहाँ रहा, हमें कूबकू जो लिए फिरी किसी नक्श पा की तलाश थी, कोई आफताब था जो फगन सरे राह गुजार कहाँ रहा, मगर एक धुन तो लगी रही ना ये दिल दुखा न गिला हुआ, कि निगाह को रंग बहार पर कोई इख्तियार कहाँ रहा, सरदश्त ही रहा तिश्ना लब जिसे जिंदगी की तलाश थी, जिसे जिंदगी की तलाश थी नबे जो यार कहाँ रहा। बहुत शुक्रिया आपका महजमी, खूबसूरत पोइट्री इनायत करने के लिए हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। मोरम एफ एम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। तो जनाब बात हो रही थी कि एतमाद अगर टूट जाए तो क्या उसको दोबारा से जोड़ा जा सकता है। पर्दे में हर आवाज के शामिल तो वही है, पर्दे में हर आवाज के शामिल तो वही है, हम लाख बदल जाएं मगर दिल तो वही है, हम लाख बदल जाएं मगर दिल तो वही है, मौजू सुखन है वही अफसाना शीरी, महफिल हो कोई रौनक महफिल तो वही है, महसूस जो होता है दिखाई

नहीं देता, दिल और नजर में हदे फाजिल तो वही है, हरचंद तेरे लुत्फ से महरूम नहीं हम, हरचंद तेरे लुत्फ से महरूम नहीं हम, लेकिन दिले बेताब की मुश्किल तो वही है, गर्दाब से निकले भी तो जाएंगे कहां हम, गर्दाब से निकले भी तो जाएंगे कहां हम, डूबी थी जहां नाव ये साहिल तो वही है, लुट जाते हैं दिन को भी जहां काफिले वाले, होशियार मुसाफिर कि ये मंजिल तो वही है, वो रंग वो आवाज वो सज और वो सूरत, सच कहते हो तुम प्यार के काबिल तो वही है, सद शुक्र के साल में जीते तो है नासिर, हासिल ना सही काविश हासिल तो वही है, हासिल ना सही काविश हासिल तो वही है। मुरमुन एफएम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, www.facebook.com/fmmurmunlahore पे आपके कमेंट्स हम तक पहुंच रहे हैं और आपके एसएमएस भी हम तक पहुंच रहे हैं। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन लाहौर से हमारे बहुत अच्छे लिस्टर हैं और कॉलर भी हैं, कहते हैं वसीम भाई आदाब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब आपका अब्दुल नूर हाशमी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अजमल जेलम से कहते कि इस जहां में कब किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, रुख हवा का देख के अक्सर बदल जाते हैं लोग। वाह जी वाह अजमल, बहुत शुक्रिया आपने जेहलम से हमारे प्रोग्राम में मैसेज किया है, एसएमएस आपका पहुंचा, यकीन मानिए बहुत दिल खुश हुआ और आपने बहुत ही खूबसूरत सा शेर भी हमें भिजवाया है, जिसके लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया।

बात हो रही थी दिल की और दिमाग की वजाहतों की, कि दिमाग कह देता है कि इस पे एतमाद नहीं किया जा सकता, एतमाद को नहीं जोड़ा जा सकता, मगर दिल कहता है कि जोड़ा जा सकता है। किसकी बात मानी जाए, किसकी ना मानी जाए, आज के प्रोग्राम का यही फॉर्मेट है, यही बातचीत हम करेंगे। इसी हवाले से अगर आपके पास कोई पोइट्री है, कोई शायरी है, वो भी आप हमें भिजवा सकते हैं, हम उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वक्त बताता चलूँ कि 2:35 हो चुके हैं, सुबह के 4 बजे तक मेरा आपका साथ रहेगा। इस वक्त आपके लिए एक और खूबसूरत कलाम है कतील शफाई का, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छू आए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए।

प्यार ने हम में कोई फर्क नहीं छोड़ा बाकी, प्यार ने हम में कोई फर्क नहीं छोड़ा बाकी, झील में अक्स तो मेरा हो नजर तू आए। मशगला अब है मेरा चांद को तकते रहना, मशगला अब है मेरा चांद को तकते रहना, रात भर चैन न मुझको किसी पहलू आए। मशगला अब है मेरा चांद को तकते रहना, रात भर चैन न मुझको किसी पहलू आए, जब जब कभी गर्दिश दौरा ने सताया मुझको, जब कभी गर्दिश दौरा ने सताया मुझको, मेरी जानिब तेरे फैले हुए बाजू आए। जब भी सोचा कि शबे हिजर न होगी रोशन, जब भी सोचा कि शबे हिजर न होगी रोशन, मुझको समझाने तेरी याद के झुगनू आए, मुझको समझाने तेरी याद के झुगनू आए। कितना हसास मेरी आस का सन्नाटा है, कितना हसास मेरी आस का सन्नाटा है, कि खामोशी भी जहां बांध के घुंघरू आए। मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया सा, मुझसे मिलने को सरे शाम कोई साया सा, तेरे आंगन से चले और लबे जू आए। उसके लहजे का असर तो है बड़ी बात कतील, उसके लहजे का असर तो है बड़ी बात कतील, वो जो आंखों से भी करता हुआ जादू आए, जब तसव्वुर मेरा चुपके से तुझे छुआए, अपनी हर सांस से मुझको तेरी खुशबू आए।

0: संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ओके जी, अभी प्रोग्राम में आपकी ऑफिस कॉल्स पहुंची हैं और सीमा जी के बाद जुगनू जूनियर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। जुगनू जूनियर बहुत शुक्रिया, यानी इनका असल नाम है मोहम्मद इकबाल, तो हम आपको वेलकम कहते हैं। कहते कि जी मैं कोशिश करूंगा कि आपसे लाइव बातचीत हो पाए, और इस वक्त मैंने कॉल किया सलाम दुआ देने के लिए। नीला जी को सलाम दे दीजिए, सजाद अली लाडला को और तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम दे दीजिए। आपका सलाम पहुंच गया जी, बहुत शुक्रिया। असद अली DHS से दोबारा हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और कह रहे थे कि अहमद फराज का कलाम मुझे सुना दीजिएगा, तो आपके लिए अहमद फराज का कलाम पेश खिदमत है। नजर बुझी तो करिश्मे भी रोजो शब के गए, नजर बुझी तो करिश्मे भी रोजो शब के गए, कि अब तलक नहीं आए हैं लोग जब के गए। सुनेगा कौन तेरी बेवफाइयों का गिला, सुनेगा कौन तेरी बेवफाइयों का गिला, यही है रस्म जमाना तो हम भी अब के गए। मगर किसी ने हमें हम सफर नहीं जाना, मगर किसी ने हमें हम सफर नहीं जाना, ये और बात कि हम साथ साथ सब के गए। मगर किसी ने हमें हम सफर नहीं जाना, ये और बात कि हम साथ साथ सब के गए। अब आए हो तो यहां क्या है देखने के लिए, अब आए हो तो यहां क्या है देखने के लिए, ये शहर कब से है वीरां, वो लोग कब के गए। गिरफ्ता दिल थे मगर हौसला ना हारा था, गिरफ्ता दिल थे मगर हौसला ना हारा था, गिरफ्ता दिल है मगर हौसले भी अब के गए। तुम अपनी शमाए तमन्ना को रो रहे हो फराज, तुम अपनी शमाए तमन्ना को रो रहे हो फराज, इन आंधियों में तो प्यारे चिराग सब के गए। नजर बुझी तो करिश्मे भी रोज शब के गए, कि अब तलक नहीं आए हैं लोग जब के गए। वरुण FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, वक्त बताता चलो 2:44 हो चुके। आपके लिए खूबसूरत शायरी और खूबसूरत पोएट्री से सजा हुआ प्रोग्राम पेश किया जा रहा है गुंचाए शौक। मैं आपका मेजबान वसीम अहमद आपके साथ। कहते कि अगर हाँ और नहीं के दरमियान उलझन है, मतलब आपने किसी बात के लिए किसी से हाँ कहलवानी है और वो हाँ भी कह रहा है और साथ साथ नहीं भी कह रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जवाब होगा? तो मैं आपको बताता हूँ कि जवाब जो होगा ना, वो जब हाँ और ना की बात होने, हाँ कभी हाँ कह दिया कभी ना कह दिया, तो वो जो 99% चांसेस होते हैं ना, वो ना के ही होते हैं। क्योंकि जब हाँ कही जाती है तो वो बहुत क्लियर कट सीधे सीधे कही जाती है कि जी हाँ हमें मंजूर है, हाँ ये ऐसे होगा। जब तजब्बुद का शिकार होते हैं लोग, तो फिर एंड जो होता है ना, वो ना ही होता है। आप क्या कहते हैं? आप भी तो बताइए ना, कभी कभी ऐसे भी लोग मिलते होंगे जिंदगी में आपको, जिनसे आप बात करते हैं, कभी वो हाँ कहते हैं कभी वो ना कहते हैं, ना कहो तो हाँ कहते हैं, हाँ कहो तो ना कहते हैं, ऐसा ही है ना। आज के प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है, जो टॉपिक है, उसके ऊपर ये है कि आपके ख्याल में टूटा हुआ एतमाद दोबारा जुड़ सकता है, या एक बार टूट जाए तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इस हवाले से आप क्या बात करते हैं? आपसे लाइव बातचीत भी होगी, अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं ऑफर कॉल्स के जरिए भी हो सकते हैं। कहते हैं कि जो लोग हमारी कदर करते हैं, जिन लोगों की हम कदर करते हैं, वो लोग बहुत कीमती होते हैं, है ना। मगर जो लोग कदर नहीं करते ना, उनके दरमियान जो कीमती लोग होते हैं, वो भी बेकार समझे जाते हैं, उनकी भी कदर नहीं की जाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती हैं, कितने दिलों के करीब रहने वाले हैं, कितने काबिल हैं, कितने अहम हैं। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आप किन लोगों के दरमियान हैं, कौन से लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। क्योंकि कुछ लोग हीरों को भी पत्थर समझकर ठुकरा देते हैं, कुछ लोग आम सी चीज में भी मोहब्बत ढूंढ लेते हैं। उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब आप अपना खुलूस, अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी किसी ऐसे शख्स पर लुटा दें जो आपकी मौजूदगी को भी मामूली समझे, आपके वजूद को मामूली समझे, आपकी बातों को मामूली समझे, आपकी सोच को मामूली समझे। और फिर एक वक्त आता है जब इंसान बदलता नहीं, बस खामोशी को इख्तियार कर लेते हैं, तब पता चलता है कि जो कदर और कीमत है वह सलाहियत की नहीं, कदर करने वालों की होती है। तो इसलिए जो कदर ना करने वालों के दरमियान कीमती लोग भी अगर मौजूद हों तो वो बेकार ही समझे जाते हैं। मनमुनाफे पाकिस्तान आपके साथ साथ, आपकी खूबसूरत बातें और आपके खूबसूरत अशआर हम तक पहुंच रहे हैं। अदीब हाशमी के दो अशआर हैं, गुजरे हुए तवील जमाने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद ही, गुजरे हुए तवील जमाने के बाद भी दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी, पहलू में रह के दिल ने दिया है बहुत फरेब, रखा है उसको याद भुलाने के बाद भी। कुछ लोग जिनको हम भूल चुके होते हैं मगर हमारा दिल उनको हमेशा याद करता रहता है, ऐसा ही है ना, वो हमें याद रहते हैं भुलाने के बावजूद। पहले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सही।
2: अब आ रही है सर
1: जी, अब आ रही है। कौन बोल रहे हैं?
2: रसीम भाई, मैं आतिफ अब्बास
1: जी।
2: आतिफ अब्बास की बात।
1: आसिफ अब्बासी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं
2: जी? आतिफ अब्बास
1: जी, आतिफ अब्बासी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाए, खैरियत से हैं
1: जी? शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। कहिए क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है प्रोग्राम आपको?
2: बहुत अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह, हमेशा की तरह सलामत रहें आप। और टॉपिक के हवाले से ये कि भाई एतमाद अगर टूट जाए तो वो पहले की तरह बहाल नहीं हो सकता,
1: नहीं जुड़ सकता दोबारा से,
2: नहीं सर उस तरह नहीं जुड़ सकता। दूसरी बात, आदमी की माफी की अगर कोई माफी चाहे तो माफ किया जाओ, वो बहाल नहीं
1: होता।
2: वैसे और भी बहुत लोग अच्छे अच्छे होते हैं, बहुत लंबी है, लेकिन सुनाना चाहता हूँ अगर इजाजत हो।
1: चले चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, आप जब आए ना तो टॉपिक तो हमने ऐसे ही रखा होता है कि थोड़ी बहुत डिस्कशन उसके ऊपर भी हो जाए। असल चीज़ तो है जो आप हमें सुनाएंगे, कोई शेर सुनाइएगा, कोई पोइट्री सुनाइएगा, कोई बात कहिएगा, कोई दिल की बात हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तभी लुत्फ आएगा। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
3: बब्बर शेर।
1: अच्छा,
3: और सर ठीक ठाक हो
1: जी? शुक्र अल्लाह का। कौन
3: सर? बोधी जट गल कर रहे।
1: बोधी जट, वेलकम, क्या हाल है सर?
3: माशाल्लाह, तुहाडियां तां असीं गल्लां सुन सुन के सानूं इन्ना को नशा हो गया ना।
1: अच्छा,
3: ओहो क्या बात है सर, शेर ओ शायरी ते तुहाडी एड्डी डूंगी है कि क्या बात है।
1: बहुत मेहरबानी बोधी जट, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। बिलकुल बंद है, ते कुछ है जी आज सुनान वास्ते?
3: सर बड़ा कुछ जो
1: सुनाओ
3: सर। काश मेरा घर तेरे घर के करीब होता, मिलना तो दूर की बात, देखना तो नसीब होता, सर तुहानू वेख ही लेंगे।
1: ठीक हो गया, ठीक हो गया।
3: सुबह लाल दवाने नी ते ना तेरे कुंडला ने साडे कतल कराने नी। कुड़ती तासे दी ते ठंडी ठंडी हवा वगदी साडे वसीम सजना दे पासे।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। वैसे हवा चल पई है अज थोड़ी थोड़ी।
3: ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਕੰਮ ਹੋਈ,
1: ਹਾਂ ਕੁਛ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀ ਨਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਸ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵਾ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
3: ਵੱਲੋਂ ਸਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ, ਹਾਂ
1: ਜ਼ਬਰਦਸਤ,
3: ਸੱਤੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
3: ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ।
1: ਚਲੋ ਚਲੋ, ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ।
3: ਹੋਰ ਸਰ ਸਭ ਖੈਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਫਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਆ ਗਏ ਨੇ?
1: ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
3: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ, ਬਸੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਟ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ।
1: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
3: ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ।
1: ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ
3: ਹਾਫਿਜ਼।
1: ਓਕੇ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਆਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਹਮੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪਰ ਇਨਕਾ ਕਮੈਂਟ ਭੇਜਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਕੋ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਰ ਕੇ ਮੁਗਲ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਸ਼ੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮੇ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦੀਜੀਏ, ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਅਗਰ ਆਪ ਭੇਜ ਸਕਤੀ ਹੈ ਤੋ ਭੇਜੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਬਾਤ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਬੜਤੀ ਚਲੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਮੁਗਲ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਹਜਬੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾ ਦੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਧੂਪ ਥੀ ਸਾਹਿਬਾ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੂਪ ਥੀ ਸਾਹਿਬਾ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਟ ਆਈ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧੂਪ ਥੀ ਸਾਹਿਬਾ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੌਟ ਆਈ ਹੂੰ ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਜਹਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਵੀ ਤੋ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਯੇ ਤੂੰ ਮੁਝਕੋ ਗੁਮਾ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਵੀ ਤੋ ਸਕਤੇ ਹੋ, ਯੇ ਤੂੰ ਮੁਝਕੋ ਗੁਮਾ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਰੋਏ ਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਛੜਤੇ ਹੋਏ, ਆਪ ਰੋਏ ਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਛੜਤੇ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਅਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਦਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਆਪ ਰੋਏ ਥੇ ਕਿਉਂ ਬਿਛੜਤੇ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਅਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਤੇ, ਹੌਸਲਾ ਜਬ ਚਟਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਯੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਗੁਮਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਕਿਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ, ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਕਿਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ, ਜਬ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਪੱਥਰ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਖਤ ਜਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਦਿਆ ਆਕਿਬ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਦਰਦਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪੇ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁਟਾ ਦਿਆ ਆਕਿਬ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਦਰਦਾਨ ਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਆਰ ਕੇ ਮੁਗਲ, ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕੇ ਲੀਏ। ਜੁਗਨੂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਔਰ ਮਹਜਬੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁੰਚਾ ਤੇਰੇ ਹੋਂਟੋ ਪੇ ਖਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਮੇਰੀ ਤੰਗੀ ਦਾਮਾ ਕਾ ਗਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਸੇ ਆਜ ਮੇਰਾ ਸਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਾਨੋ ਪਰ, ਯੇ ਵੋ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਹੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਦੁਬਾਏ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨੋ ਕੋ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਧੜਕਨੇ ਕਾ ਗਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਯੂ ਚਾਂਦ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਦੀ ਮੇਂ ਰਕਸਾਂ, ਰਾਤ ਯੂ ਚਾਂਦ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ ਨਦੀ ਮੇਂ ਰਕਸਾਂ, ਜੈਸੇ ਝੂਮਰ ਤੇਰੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਹਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਪੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਹਾਰੋਂ ਕਾ ਨਜ਼ੂਲ, ਸਿਰਫ ਏਕ ਫੂਲ ਕਿਵਾੜੋਂ ਮੇਂ ਖਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਾਫਿਰ ਤੁਝੇ ਇਲਜ਼ਾਮੇ ਤਗਾਫੁਲ ਦੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਗਿਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਸੇ ਨੀਲ ਕਵਲ ਵੋ ਤੋ ਕਤੀਲ, लोग कहते हैं जिसे नील कमल वो तो कतील शब को झील सी आंखों में खिला करता है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत शुक्रिया। आर के मुगल ने हमें थम्स अप का निशान भेजा है, बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम एंड वेलकम आर के मुगल, आपको दिल की गहराइयों से हम वेलकम कह रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुंच रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत आपके जो आप तस्वीर 100% और क्या बात है, बड़ी खूबसूरत चीज़ें आपने भेजी हैं, थैंक यू वेरी मच। जब महाजबी कहती हैं कि जी सब मुमकिन है, एतमाद भी बहाल हो सकता है, शर्त यह है कि अब की बार जो एतमाद हो वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो। दिल जब कह दे तो दिल की बात सुन लेनी चाहिए और तअल्लुक को टूटने से बचा लेना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका महाजबी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में शामिल है फौजिया, तमाम सुनने वालों को सलाम। प्रोग्राम खूबसूरत खूबसूरत पोइट्री प्रोग्राम में शामिल होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को लाइक किया जुगलू जूरी और महाजबी ने। आरजे डॉक्स हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आरजे डॉक्स आपको मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ, खुश नसीबी कि आप मेरे प्रोग्राम को सुन रही हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सर आपका प्रोग्राम आज सुनने को नहीं मिला मुझे और एक जो है वो कमी सी महसूस हो रही है। एनीवेज आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को लाइक करने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। किंग फजल खान काकड़ ने प्रोग्राम को लाइक किया है, आरजे डॉक्स ने लाइक किया है, आर के मुगल ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आरजे डॉक्स बहुत शुक्रिया, तमाम लिसनर्स का बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर से बात करती हैं, आपके लिए बहुत खूबसूरत पोएट्री मेरे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कौन बोल रहे हैं?
4: आतिफ अब्बासी बात कर रहा
1: हूँ। जी आतिफ अब्बासी सुनाइए।
4: वह जो सदाएं देते हुए और खाक उड़ाते हुए,
1: वह
4: मैं अपने आप से गुजरा था तुझ तक आते हुए,
1: मैं अपने आप से गुजरा था तुझ तक आते हुए,
4: फिर उसके बाद जमाने ने मुझको रौंद दिया,
1: वह
4: मैं गिर पड़ा था किसी और को उठाते हुए।
1: जबरदस्त जबरदस्त।
4: कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए।
1: आहा।
4: फिर उसके बाद अता हो गई को तासीर, मैं रो पड़ा था किसी को गजल सुनाते हुए।
1: बहुत बढ़िया।
4: खरीदना है तो दिल को खरीद लो फौरन, खिलौने टूट भी जाते हैं आजमाते हुए।
1: वाह।
4: तुम्हारा गम भी किसी तिफले शीर खार सा है कि ऊंग जाता हूं मैं खुद को सुलाते हुए। कहीं मिले भी तो मिलता है राह में फारिश, कहीं से आते हुए या कहीं को जाते हुए।
1: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया
4: बहुत शुक्रिया आप तमाम सुनने वाले को।
1: आतिफ अब्बासी बहुत शुक्रिया आपने दोबारा कॉल की और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके,
4: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी। परवीन शाकिर का कलाम है, उम्र का भरोसा क्या, उम्र का भरोसा क्या, क्या पल का साथ हो जाए, उम्र का भरोसा क्या पल का साथ हो जाए, एक बार अकेले में उससे बात हो जाए। उम्र का भरोसा क्या पल का साथ हो जाए, एक बार अकेले में उससे बात हो जाए। दिल की गुंग सर शारी उसको जीत ले, लेकिन दिल की गुंग सरशारी उसको जीत ले, लेकिन अर्ज़े हाल करने में जरा एहतियात हो जाए। ऐसा क्यों कि जाने से सिर्फ एक इंसान के, ऐसा क्यों कि जाने से सिर्फ एक इंसान के सारी की सारी जिंदगानी ही बेसबात हो जाए। याद करता जाए दिल और खिलता जाए दिल, औस की तरह कोई पात पात हो जाए। सब चिराग गुल करके उसका साथ سب چراغ گل کر کے اس کا ہاتھ تھاما تھا، کیا قصور اس کا جو من میں رات ہو جائے، ایک بار کھیلے تو وہ میری طرح اور پھر، ایک بار کھیلے تو وہ میری طرح اور پھر، جیت لے وہ ہر بازی مجھ کو مات ہو جائے۔ رات ہو پڑاؤ کی پھر بھی جاگیے ورنہ، رات ہو پڑاؤ کی پھر بھی جاگیے ورنہ، آپ سوتے رہ جائیں اور کوئی ہاتھ ہو جائے۔ عمر کا بھروسہ کیا پل کا ساتھ ہو جائے، ایک بار اکیلے میں اس سے بات ہو جائے، ایک بار اکیلے میں اس سے بات ہو جائے۔ پروین شاکر کا کلام آپ کے لیے پیش کیا گیا۔ نیکسٹ کالر، السلام علیکم۔
5: وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام حسین بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے
1: جی؟ جی شکر اللہ کا ٹھیک ہے۔
5: اسد علی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔
1: اسد علی کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟
5: الحمدللہ الحمدللہ۔ دعائیں سارا آپ کی، دل کو خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کر، یقین مانیے
1: بہت
5: خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔
1: تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ آپ کے لیے ہی آتے ہیں ہم سر، آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں
5: سر۔ آپ کی محبت کا انتہا شکریہ۔ اچھا سب سے پہلے تو میں موضوع پہ بات کروں گا۔ معاف تو 100 بار بھی کیا جا سکتا ہے، مگر بھروسہ ایک بار ہی ہوتا ہے، بھروسہ بار بار نہیں کیا جا سکتا۔ میری آواز آ رہی ہے؟
1: کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ، بالکل آ رہی ہے جی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے آپ کے دل میں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ سے وہی زمانہ واپس آ جائے، وہی اعتماد، وہی بھروسہ واپس آ جائے، اسی کو جوڑ لیتے ہیں، دوبارہ سے جوڑ لیتے ہیں۔
5: جی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر بھروسہ جڑ بھی جائے نا تو ویسا نہیں ہوتا جیسا پہلے ہوتا ہے۔ بھروسہ جیسے کہ پہلے اعتماد کیا جاتا ہے نا، ویسے اعتماد اس کے ساتھ بھرا نہیں کیا جا سکتا۔
1: مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیشے میں بال آ گیا؟
5: جی ہاں،
1: ٹھیک ہو گیا۔
5: تو شیر میں سنانا چاہوں گا آپ کو، ایک دو شیر ہیں چھوٹے چھوٹے۔
1: جی،
5: کہتا کتنے ظالم ہیں تمہارے شہر کے لوگ، کتنے ظالم ہیں تمہارے شہر کے لوگ، قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا۔ کہتا ہے چلتے چلتے دل نے پوچھا زخمی پاؤں کے چالوں سے، چلتے چلتے دل نے پوچھا زخمی پاؤں کے چالوں سے، کتنی دور مثالی بستی دل میں رہنے والوں نے۔ دل امیر تھا مقدر غریب تھا، اچھے ہم تھے برا نصیب تھا، اتنی کوششیں کر کے کچھ بھی نہ کر سکے ہم، وسیم بھائی گھر بھی جلتا رہا اور سمندر بھی قریب تھا۔ آخری شعر آپ کی نظر۔ کہتا کہ یہ مت سوچئے کہ ہم بھول گئے ہیں آپ کو وسیم بھائی، یہ مت سوچئے کہ ہم بھول گئے ہیں آپ کو وسیم بھائی، صبح کی پہلی اور رات کی آخری سوچ ہو تم۔
1: ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست۔
5: تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام۔ میرا پیارا سا بھائی بودی چار سب بھی آئے تھے، ان کو بالخصوص میرا سلام۔
1: بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اوکے جی۔ رات کی دشت میں تنہائی کا عالم تھا بہت، رات کی دشت میں تنہائی کا عالم تھا بہت، چاند خاموش رہا درد کا موسم تھا بہت، ہم نے چاہا کہ بھلا دیں تیری یادوں کا سفر، ہم نے چاہا کہ بھلا دیں تیری یادوں کا سفر، دل کے ہر موڑ پہ ایک نام نمایاں تھا بہت، وقت گزرا تو کوئی زخم بھی مدم ہو گئے، وقت گزرا تو کئی زخم بھی مدم ہو گئے، پر تیری یاد کا احساس ابھی تک تھا بہت، ہم نے چاہا کہ بھلا دیں تیری یادوں کا سفر، دل کے ہر موڑ پہ ایک نام نمایاں تھا بہت۔ 000101 is the number to dial۔ ہمارے پروگرام کو لائک کیا آر کے مغل نے، آر جے ڈاکس نے، بہت شکریہ آر جے ڈاکس، اگین تھینک یو ویری مچ۔ کنگ فضل خان کاکڑ نے، اور جونیو جونیئر اور مہاجوین نے، آپ کی کچھ اور کمنٹس مجھ تک پہنچے ہیں، انہیں بھی تھوڑی دیر میں پروگرام میں شامل کریں گے۔ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں، وقت بتاتا چلوں 3:06 ہو چکے ہیں۔ ہلو ہلو

0: दिया जो जख्म दिया फूलों ने दिया कांटों से शिकायत कौन।
1: बिलकुल ठीक है जनाब।
0: दोस्ती होंगी ना किसी गलत फहमी ना जिवें कहिंदे ना शीशा गलती ना टुटदा दोस्त जरा गलत फहमी ना तो गलत फहमिया भी हो जांदियां बाद जाके फिर बड़ी देर बाद जाके पता चलता यार पता नहीं यार मैं ही गलत थी तो फिर वो गल नहीं रह जाती। माशाल्लाह साडी नीला पी नहीं अजे आई आ जाएगी इंशाल्लाह क्योंकि वो प्रोग्राम की जीना था ओदी कार सुनने वास्ते ना यकीन कर एक साड़िया भैन होर भी है साजदा अपना अब्दुल हमीद गल साहब ओदी शायरी सुनने वास्ते ते ताडे ताडा प्यार।
1: बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज। ओके जी अब्दुल हमीद फारूकाबाद से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और खूबसूरत कलाम आपके लिए साथ साथ हम पोइट्री भी आपको सुना रहे हैं शायरी भी सुना रहे हैं। आप भी अपनी शायरी ज़रूर सुनाइएगा। टेलीफोन नंबर आपको मैंने बता दिया। आप अगर फेसबुक पे आएंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हमें एसएमएस करेंगे तब भी बहुत अच्छा लगेगा। आपके एसएमएस का आपके फेसबुक के मैसेजेस का मुझे इंतज़ार रहेगा। अजमल हमारे प्रोग्राम में जेरम से शामिल हुए। अब्दुल नूर हाशमी गार्डन टाउन रिवाज गार्डन लाहौर से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आपका बहुत शुक्रिया। आपके एसएमएस का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं एक और खूबसूरत कलाम। वो क्या कह गई मुझको क्या कहते कहते वो क्या कह गई मुझको क्या कहते कहते भला कह गए वो बुरा कहते कहते वो क्या कह गए मुझको क्या कहते कहते भला कह गए वो बुरा कहते कहते कहीं ये ना हो आंख भर आए कासिद मेरी दास्ताने वफा कहते कहते उठा था मैं कुछ उनसे कहने को लेकिन जुबान रुक गई बारहा कहते कहते वो सुनते मगर ए हजूमे तमन्ना वो सुनते मगर ए हजूमे तमन्ना हमी खो गए मुद्दा कहते कहते जमाने की आगोश में जा पड़े हम जमाने को नाशना कहते कहते पिलाएगा साकी तो पीनी पड़ेगी किसी दिन रवा न रवा कहते कहते निगाहें झुकी लब हिले मुस्कुराए निगाहें झुकी लब हिले मुस्कुराए वो चुप हो गए जाने क्या कहते कहते वो चुप हो गए जाने क्या कहते कहते कभी कभी कहते कहते भी तो लोग चुप हो जाते हैं। हमारे कान तरस रहे होते हैं वो बात सुनने के लिए जिसको वो कहते कहते चुप हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि नहीं हुआ? हेलो वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब वेलकम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं वसीम भाई?
1: जी जी शुक्र अल्लाह का ठीक हो जी।
2: मैं एक लंबे सफर में था।
1: अच्छा
2: हाँ मैं कुछ 2:45 बजे घर पहुँचा।
1: ओहो चले शुक्र अल्लाह का खैर खैरियत से आप आ गए अपने घर।
2: और आपके लाहौर की तरफ का सफर था।
1: अच्छा अच्छा वाह वाह हमसे मिलके ही जाते आप।
2: इतनी सख्त गर्मी है
1: आज तो बहुत ही। ओहो हो
2: मैं सुबह निकला मुझे बड़ा जरूरी काम था। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
1: चले शुक्र अल्लाह का।
2: मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है हवा तो एक इश्तिहारा है।
1: जी
2: आपके साथ शेयर की होगी मैंने।
1: जी जी सुनाइए।
2: हवा तो एक इश्तेहार है, देखिएगा नवीन के। उससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ।
1: जी
2: के मैंने एक शेर कहा था कि जिंदगी होती घर जो मफरूजा, अगर नहीं घर
1: जी
2: अली फटा दें। जिंदगी होती घर जो मफरूजा, फिर तो हर शख्स ही खुदा होता। मफरूजा नहीं है ना जिंदगी।
1: क्या बात क्या बात।
2: नज़्म देखिए कि मान है कि हवा तो एक इश्तेहारा है। नज़्म कुछ यूं है कि हवा ने बहुत कुछ देखा हुआ है, हवा ने बहुत कुछ सुना हुआ है, मगर ये बोलना नहीं चाहती, बेद खोलना नहीं चाहती।
1: वाह क्या बात।
2: शायद इसके भी लब सिले हैं, शायद इसके भी लब सिले हैं, हवा में हवा पे लाखों तीर चले हैं।
1: वाह
2: हवा पे लाखों तीर चले हैं, अगर ये चाहे तो चंद चेहरों को बेनकाब कर दे, साजिशों को फाश कर दे।
1: वाह क्या बात है क्या बात है।
2: अगर ये चाहे बड़ी मेहरबानी, अगर ये चाहे तो चंद चेहरों को बेनकाब कर दे, साजिशों को फाश कर दे, अगर ये चाहे तो खुद को किरदार से अलग करके कहानी ही को मुकम्मल कर दे।
1: वाह क्या बात है क्या बात है।
2: लेकिन इसकी आवाज को समझेगा कौन, फिर उसे कदम मिलाकर चलेगा कौन।
1: बहुत अच्छे।
2: इसे इसे तो कारवानों की, बादवानों की, राहजनों की, राहबरों की सब खबर है।
1: वाह ब्यूटीफुल।
2: इसे तो कारवानों की, बादवानों की, राहबरों की, राहजनों की सब खबर है। कई सालों से ये मंजिल की तलाश में है। वसीम साहब आपके सामने दो लाइन है कि कई सालों से ये मंजिल की तलाश में है। खुद को हवा खुद को जमाना शनास कहने वालों, क्या तुम हवा शनास भी हो।
1: बहुत अच्छे।
2: खुद को जमाना शनास कहने वालों, क्या तुम हवा शनास भी हो। हवा के गम की भी कुछ खबर है। ये बरहना पा बरहना सर भूखी प्यासी चलती रहती है, जागती रहती है, सो नहीं सकती, रो के हाल दिल कह नहीं सकती।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
2: अनगिनत हादसों पर ये सोचती रहती है, इब्ने आदम की समातों से सर फोड़ती रहती है।
1: वाह।
2: कुछ ढूंढती रहती है, कामते हुए शहरों से गुजरती है ये, हजूम में तो ये ठहरती ही नहीं, जरा सी देर को रुकती ही नहीं, बहुत रंजीदा रहती है, अक्सर संजीदा रहती है।
1: बहुत अच्छे।
2: ओख से सहमी हुई, आहों से उकताई हुई, बीमार सी लगती है, लाचार सी लगती है।
1: बहुत अच्छे।
2: कभी तो ये अरूजो जवाल की दास्तानों पर बहुत मुस्कुराती है, फिर रोने लगती है। इसे तो मुखबरी भी नहीं आती, हवा सरगोशियां सी करती है।
1: वाह वाह।
2: ये बहुत से तूफानों का पेश हैमा है, बहुत से राज हवा के सीने में, बहुत से राज हवा के सीने में पोशीदा हैं। हवा न आवारा न अनपढ़ है, मगर अजीब दुख में गिरफ्तार है, और दुख भी ऐसा कि इसकी अपनी कोई जुबान नहीं है।
1: बहुत अच्छे।
2: कि इसकी अपनी कोई जुबान नहीं है, हवा धुआं नहीं है, ये जमीनों आसमानों के दरमियां फकत एक इशारा है। हवा तो एक इश्तेहारा है, हवा तो एक इश्तेहारा है। हवा ने बहुत कुछ देखा हुआ है, हवा ने बहुत कुछ सुना हुआ है, मगर ये बोलना नहीं चाहती, बेत खोलना नहीं चाहती।
1: बहुत बढ़िया अमित गुल साहब, बहुत अच्छे।
2: मैं एक और नज़्म लिख रहा हूँ हवा पे। देखिए मैं हम लोग वो मुझे किसी बुजुर्ग का कॉल याद आया, तो ये बात आपके लिए नहीं है, ये तमाम समातों के लिए है। कहते हैं कि जब आप कोई बात करें ना, तो उसको इतना सोच समझ कर करें, अगर वो हवा में दाखिल होगी ना
1: जी,
2: तो फिर यूं समझ लें कि वो राज राज नहीं रहा। मैं आज आपको राज की एक नई डेफिनेशन बता रहा हूँ। मतलब आप अकेले में हैं, कोई भी आपके पास नहीं, आपके पास एक राज है। उसे आप हवा के भी शुगर नहीं कर सकते, और बड़े मामलात होते हैं इसमें। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा।
1: बहुत शुक्रिया,
2: अटेंडेंस में आपकी फेसबुक पे लगा
1: देता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू,
2: अल्लाह हाफिज़।
1: अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमीद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और खूबसूरत कलाम अता फरमाने के लिए। जुगनू जूनियर ने हमें लिखा है कि आर के मुगल ने कहा कि जी जुगनू की शायरी भी प्रोग्राम में शामिल कीजिए, तो हमने तो जनाब पहले भी करनी होती है। लैले की तरफ ताक ना मैं, मखमल की तरफ देख, एकैस जो है जौक नजर दिल की तरफ देख, दरिया पे नजर डालना साहिल की तरफ देख, दिल में है कमी कौन सी तू दिल की तरफ देख, मौजों की ना तूफान की ना साहिल की तरफ देख, सब कुछ है इसी हिजर में तू दिल की तरफ देख। दुनिया के मनाजर तो हैं दुनिया के मनाजर, तू दिल की तरफ, दिल की तरफ, दिल की तरफ देख, कब तक ये नज़र सुए हरम नासे नादा, ए अक्ल के अंधे हरम दिल की तरफ देख, मेरो माओ अंजम भी गुलो सुरो समन भी, सब कुछ इसी दिल में है इसी दिल की तरफ देख। बहुत शुक्रिया जनाब, अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
3: वालेकुम सलाम, मुस्लिम भाई क्या हाल है?
1: जी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। कौन?
3: मैं एक मरतबा फिर आपके शो में दोबारा आया हूँ।
1: जी
3: मैंने ना एक अपना छोटा सा शेर लिखा है, अपने पास से लिखा है, मुझे जरा बताइएगा कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, सिर्फ आपने तस्दीक करनी है।
1: किसी उस्ताद से चेक करवाए ना।
3: मैं तो आपके उस्ताद
1: हम तो खुद तिफले मकतब हैं।
3: आप इतनी शायरी गा रहे हैं माशाल्लाह, अगर आप उस्ताद नहीं है तो आप और क्या हो सकते हैं।
1: मेहरबानी आपकी,
3: अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरा छोटा सा शेर है कि दिल दिया उसको यार समझकर, दिल दिया उसको यार समझकर, वो भोसड़ी का खा गया अचार समझकर।
1: ओके जी, आगे हम मतलब पूरा फैमिली स्टेशन है, आपको पता है कि ये फैमिली स्टेशन है, आप इसके ऊपर ऐसे खूबसूरत बातें किया कीजिए जो कि पूरी फैमिली में आप अपनी फैमिली में बैठ के सुना सकें। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा है सूरज को दिखाते हैं चिराग, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों को, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग, बस्तियां दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आंखों से छिपते चले जाते हैं चिराग, क्या खबर उनको कि दामन में भड़क उठते हैं जो जमाने की हवाओं से बुझाते हैं चिराग, क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं जो जमाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग, गोसिया बख्त हैं हम लोग ये रोशन है, जमीर खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग, बस्तियां चांद सितारों की बसाने वालों कुर्रे अर्ज पे बुझते चले जाते हैं चिराग, ऐसे बेदर्द हुए हम भी के अब गुलशन पर बर्क गिरती है तो जिंदा में जलाते हैं चिराग, ऐसी तारीकी आंखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चिराग। 1111001 इज द नंबर टू डायल। हेलो।
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: حسین بھائی کیا حال چال ہیں؟
1: جی شکر اللہ کا ٹھیک ہوں. کون؟
0: جی جگنو جونیئر بات کر رہا ہوں.
1: جی جگنو جونیئر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں
0: الحمدللہ جناب, الحمدللہ شکر الحمدللہ. تو ترستی آنکھیں اداس چہرہ نحیف لہجہ بغیر تیرے.
1: واہ.
0: ترستی آنکھیں اداس چہرہ نحیف لہجہ بغیر تیرے, بکھری زلفیں لباس اجڑا وجود خستہ بغیر تیرے.
1: آہا, کیا بات ہے جگنو جونیئر, شانگیں آپ زبردست.
0: امیک جنگل گھپ اندھیرا ڈوبی سانسیں ضعیف دھڑکن.
1: آہا, ضعیف دھڑکن. واہ.
0: برہنہ پاؤں بے نام منزل نشان رستہ بغیر تیرے.
1: بہت اچھے,
0: بہت شکریہ جی. کہ خاموش بلبل سرد پت جھڑ بے رنگ موسم ویران گلشن. نہ پھول خوشبو ہوا نہ بادل کوئی نغمہ بغیر تیرے. امید مدھم مزاج برہم مایوس جیون ہے آس ہر دم. نہ کوئی خواہش نہ کوئی حسرت نہ ہے تمنا بغیر تیرے.
1: بہت اچھے.
0: کالی صبحیں سرخ راتیں وقت ساکن اداس شامیں. ہزار صدیوں کے ہے برابر ہر ایک لمحہ بغیر تیرے.
1: بہت اچھے.
0: کہ تعویز الٹے ادھوری منت وظیف جادو ناکام سارے. نہ استخارہ ہی کام آیا نہ کوئی دھاگا بغیر تیرے.
1: واہ.
0: عجیب قسمت نذیب الجھا غلط لکیریں میرا مقدر. اے گردشوں پہ یہ آ گیا ہے میرا ستارہ بغیر تیرے.
1: بغیر تیرے.
0: اور آخری شعر ہے کہ ہجر کامل فراق حاوی.
1: واہ.
0: ہجر کامل فراق حاوی جدائی یکسر طویل دوری. خواب قربت وصال حسرت رضا ہے تنہا بغیر تیرے.
1: بہت بڑھیا, بہت بڑھیا جگنو جونیئر, کمال ہو گیا, بہت اچھے.
0: اور تمام خوبصورت سماعتوں کو السلام علیکم. حبیب صاحب کو بھی, انیلا پی, ساجدہ پی, اور وہ کیا نام اس کا مشال آپ تو آئی نہیں کافی دنوں سے, نہ ماریا شہزادی آ رہی ہیں.
1: چلے وہ بھی آئیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ,
0: ابھی کو بہت ساری دعائیں بھی, اور السلام علیکم.
1: اوکے اوکے, اللہ حافظ. اوکے جی. ابھی جگنو جونیئر نے بہت خوبصورت پوئٹری ہمیں سنائی. کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, کبھی کبھی نام لینے سے ہی بہت لطف آ جاتا ہے, کسی کو یاد کرنے سے لطف آ جاتا ہے, کسی کا نام زبان پہ. آپ اکیلے بیٹھے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں اکیلے, اپنے کمرے میں تنہا بیٹھے ہیں, وہاں جسے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام بھی لے لیں گے نا, تو اس کا لطف بڑھ جاتا ہے, اس ماحول کا قیمت بڑھ جاتی ہے. کبھی ان کا نام لینا, کبھی ان کی بات کرنا, میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا. میرا ذوق ان کی چاہت, میرا شوق ان پہ مرنا. وہ کسی کی جھیل آنکھیں, وہ میری جنوں مزاجی. وہ کسی کی جھیل آنکھیں, وہ میری جنوں مزاجی. کبھی ڈوبنا ابھر کر, کبھی ڈوب کر ابھرنا. تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے. تیرے منچلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے, نہ کسی کی بات سننا, نہ کسی سے بات کرنا. شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری. شب غم نہ پوچھ کیسے تیرے مبتلا پہ گزری. کبھی آہ بھر کے گرنا, کبھی گر کے آہ بھرنا. وہ تیری گلی کے تیور, وہ نظر نظر پہ پہرے. وہ تیری گلی کے تیور, وہ نظر نظر پہ پہرے. وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزرنا. کہاں میرے دل کی حسرت, کہاں میری نارسائی. کہاں میرے دل کی حسرت, کہاں میری نارسائی. کہاں تیرے گیسوں کا تیرے دوش پہ بکھرنا. چلے لاکھ چال دنیا ہو, زمانہ لاکھ دشمن, جو تیری پناہ میں ہو اسے کیا کسی سے ڈرنا. वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, है नसीर वरना मुश्किल तेरा पार। जो तेरी पनाह में हो उसे क्या किसी से डरना, वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, वो करेंगे ना

0: हर बुध की और जुमेरात की दरमियानी रात में आपके लिए 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से पेश किया जाता है, रात 2 से लेकर सुबह के 4 बजे तक। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
1: हेलो
0: हेलो हेलो,
1: आपको आवाज नहीं सुनाई दे रही?
0: नहीं दे रही, अब आई है जी। कौन? सीमा जी।
1: हाँ जी
0: जी, सीमा जी क्या कह रही थी आप?
1: मैं कह रही थी कि वो जुगनू जूनियर ने जो गजल पढ़ी है ना,
0: जी जी,
1: वो मुझे बहुत पसंद आई है।
0: जबरदस्त, जुगनू जूनियर ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छी गजल पढ़ी उन्होंने। चलें जी, जुगनू जूनियर, आपकी तारीफ करने के लिए सीमा जी का फोन आया था। बिखेर बैठा हूं और आंख उम्र रफ्ता के, बिखेर बैठा हूं और आंख उम्र रफ्ता के, यहीं कहीं मेरा दिल था, यहीं कहीं तेरी याद। यहीं कहीं मेरा दिल था, यहीं कहीं तेरी याद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन
2: जी? मेरा नाम ताहिर भट्ट है।
0: क्या नाम है?
2: ताहिर भट्ट
0: जी। ताहिर भट्ट साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जी शुक्र है लगा। ताहिर भट्ट साहब कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ?
2: मैं जी लाहौर से।
0: जी
2: अच्छा
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा।
2: क्या भाई,
0: शुक्र अल्लाह का जनाब, बड़ी मेहरबानी, आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? ओहो, मिस्री शाह से कॉल आई थी, कोई लाइन ड्रॉप हो गई उनकी, तो बात दरमियान में रह गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दरमियान में बात रह जाती है। उसने जब हाथ छुड़ाया था कहीं रास्ते में, उसने जब हाथ छुड़ाया था कहीं रास्ते में, आग कपड़ों में लगा लेनी थी मर जाना था। आग कपड़ों में लगा लेनी थी मर जाना था, जब कोई हाथ छुड़ा ले तो फिर क्या किया जाए। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम जी।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: वसीम साहब, वहीद बलोच अर्ज कर रहा
0: हूँ। वहीद बलोच कहाँ से बोल रहे
3: हैं? लाहौर LDA1 से।
0: जी वहीद बलोच साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। पहली दफा गालबन आपने कॉल किया है?
3: नहीं, मेरी आपसे दूसरी दफा।
0: अच्छा, ओहो जबरदस्त, वेलकम जनाब, वेलकम।
3: लेकिन ये तकरीबन 3-4 महीने बाद हो रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बस तभी मेरे ज़हन से निकल गया। ये ठीक ठाक है ना आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चले शुक्र अल्लाह, क्या कहेंगे?
3: नसीर बलोच साहब की गजल के 2-3 अशआर से करना चाहूंगा।
0: जी सुनाइए।
3: जुल्फ के सवरने में देर कितनी लगती है, जुल्फ के सवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है।
0: बहुत अच्छे, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है।
3: आंख से दिल तक भला फासला ही कितना है, आंख से दिल तक भला फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। कांच का बदन लेकर पत्थरों पे चलता हूँ, कांच का बदन लेकर पत्थरों पे चलता हूँ, किरचियां बिखरने में देर कितनी लगती है।
0: किरचियां बिखरने में देर कितनी लगती है, बहुत अच्छे।
3: आखिरी चेत के दुआ है मेरी के बद्दुआ से बच, दुआ है मेरी के बद्दुआ से बच, सर्द आह भरने में
0: सर्द आह भरने में देर कितनी लगती है। क्या
3: देर कितनी लगती?
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
3: आपका प्रोग्राम पंजाबी का भी होता है?
0: जी पंजाबी का होता है, मंडे को, पीर को दोपहर 1 बजे।
3: अच्छा, पीर को दोपहर 1 बजे। नसीर बलोच साहब की किताब, एक उस पे अवार्ड मिला है पंजाब लैंग्वेज आर्ट काउंसिल ने, उसको इन

0: इनाम भी 2 लाख रुपया दिया है। किताब का नाम है पानी की दीवार।
1: कौन सी दीवार?
0: पानी की दीवार।
1: पानी की दीवार, अच्छा अच्छा, चले बहुत अच्छे।
0: उसका एक शेर है
1: जी,
0: अज अखां तैनू वेखण आईयां ने,
1: अज अखां तैनू वेखण आईयां ने,
0: पानी विच पानी दी दीवार ना बना।
1: वो डिस्टॉर्शन आ गई, दोबारा बताएं, सुनाए।
0: अज अखां तैनू वेखण आईयां ने, पानी विच ना पानी दी दीवार बना।
1: आहा हा, पानी विच ना पानी दी दीवार बना,
0: पानी दी दीवार बना। ए पानी दी दीवार उन्हां दी किताब दा नाम है।
1: गुड हो गया, बहुत अच्छे। चलो मेनू मेरा अगर मौका मिले तो मैं जरूर पढ़ांगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। कांटी कहीं पे रात तो कांटी सहर कहीं, कांटी कहीं पे रात तो कांटी सहर कहीं, राहे वफा में चैन ना पाया मगर कहीं। वो सुन रहे हैं यू मेरा फसाना है दिल, दिल है कहीं ख्याल कहीं है नजर कहीं। मंजिल करीब आए तो ऐ दोस्त किस तरह, राही कहीं है राह कहीं राह भर कहीं। दिल में पिनप रही है यही एक आरजू, बेताब कोई हमको मिले हम सफर कहीं, बेताब कोई हमको मिले हम सफर कहीं।

उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में गायत को पहुंच गए।

तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूंगी।